आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 8:55 होने वाले हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

FM-Band 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रूपरेखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

रात 8 बजे सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:05 पर और शाम 7:30। फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीतों का समय रहेगा रात 9 बजे। नौ बजकर 25 मिनट पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। रात 10 बजे सुनिए एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी। शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें युवा साथी सुनेंगे, फोन करें, गीत सुने। पणिहारी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। दिन में 10 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के। 10:30 का समय रहेगा गाने नए तराने नए। रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा दिन में 9:10 पर। यह था हमारे चैनल से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में 45 स्थानों पर आज 20वें रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। राज्य सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 80 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया और प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी। आज पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये नियुक्ति पत्र विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को दिए जाएंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले रोजगार मेले में 51 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि अब तक हुए रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित

0: आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। साथ ही 17 देशों के न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। प्रतिभागी प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमियां शामिल हैं। पर्यावरण से जुड़ी गवर्नेंस की प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में पर्यावरण सुशासन और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। वे कल उत्तर प्रदेश में आयोजित एक बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि इस कार्य योजना में पुराने वाहनों से संबंधित उपाय सुझाए जाएंगे।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: गौरतलब है कि NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए पिछले वर्ष दिसंबर से अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय पर बल दिया गया है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। कल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए 25 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को होगा। वहीं प्रदेश के बाकी 305 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 592 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 820 उम्मीदवार वैध रूप से नामांकित हुए थे, जिनमें से 197 ने नाम वापस ले लिया। वहीं 32 उम्मीदवार निर्विरोध रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 989 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से 85 नामांकन पत्र निरस्त और 14 नामांकन पत्र खारिज किए गए। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को होगा, इसके ठीक बाद मतगणना की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 80 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में संबंधित विभागों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे से प्रभावित रहे और अब इससे बाहर निकल चुके लोगों को भी अभियान से जोड़ा जाए, ताकि उनके अनुभवों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 से संचालित अभियान के तहत राज्य में अब तक 1,35,00,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही 3,735 नशा मुक्त मित्र पंजीकृत हैं। इस बीच जयपुर के निजी विश्वविद्यालय में NSS की ओर से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा हिंगोनिया ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया।
2: यहाँ पे मोटिवेशनल क्लास थी, युवाओं को कानून की जानकारी दी गई है, नशा मुक्ति अपनाने के लिए उनको मोटिवेट किया है, साथ में समस्त प्रकार की जितने प्लेटफॉर्म्स हैं पुलिस के उनके बारे में बताया है कि कैसे आप उनका उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं, जैसे राजकोप सिटीजन ऐप हो गया, 1930 हो गया, इनको बताया गया है, साथ में 112 को कैसे आप बुला सकते हैं, ये सारा बताने का इनको प्रयास किया गया।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि एआई और तकनीक चिकित्सा कौशल के विकास में मदद कर सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदना का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने ये बात जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में कही। राज्यपाल ने चिकित्सकों से मूत्र रोग, प्रोस्टेट और गुर्दा प्रत्यारोपण से जुड़े रोगों के प्रभावी उपचार के साथ इन रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। और अब मौसम। मॉनसून के प्रदेश से विदा होने से पहले कई हिस्सों में बरसात का सिलसिला जारी है। 12 में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रात भर रुक रुक कर चलता रहा। आज सुबह भी थोड़ी देर के लिए बादल बरसे। बालोतरा में कल शाम को कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित कई इलाकों में कल मध्यम से तेज बरसात हुई। इससे बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल की फसलों को जीवनदान मिला है। प्रदेश में आज पश्चिमी जिलों को और शेखावटी क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट है। इन स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 सितंबर को मॉनसून की रवानगी शुरू होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य में आधारभूत सुविधाओं वाले क्षेत्रों में परिवारों को प्राथमिकता से घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी डीपीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने ये बात जयपुर में सीजीडी संस्थाओं के साथ डीपीएनजी नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक 40,000 नए परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 45 स्थानों पर 20वें रोजगार मेले का आज आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। राज्य सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 80,00,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया। और प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी। आज पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहाँ संभव है।

0: अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। इसके संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
3: हाथ की रेखा।
0: प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना।
3: हाथ की रेखा।
0: इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए चंद्रो आत्मा के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: यह कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना स्वर है लता मंगेशकर का।

नरेंद्र चंचल की गई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना का सभी अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साजों पर धुन। यह है सबसे पहली धुन बीजू शाह, इसके आर्टिस्ट हैं पियानो पे सात समंदर पार।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साजों पर धुन, और अब पाकिजा फिल्म का एक गीत मौसम है आशिकाना, आइए सुनते हैं इस पर एक धुन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साजों पर धुन। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। प्रोग्राम का पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। फिल्म का नाम शिकार।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: कार्यक्रम का अगला गीत शोले फिल्म से है, स्वर है RD बर्मन का।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आबरू फिल्म का गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बाहर आने तक फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के। अब पेश है फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने नए तराने नए।

आवाज़ कुमार सानू की है, फिल्म का नाम दिलवाले। सुरों ने छेड़े जब दिल की बात, खामोशों ने भी कह दी अपनी बात, गीतों में छुपे हैं जज्बात हज़ार, संगीत ही तो है दिल का सच्चा यार।

प्रोग्राम का अगला गीत कृष्णा कोटेज फिल्म से है, आवाज़ श्रेया घोषाल की। दिल की धड़कन में कोई मीठी मीठी सी सदा है, मोहब्बत की फिजाओं में जैसे कोई दुआ है। जब सुरों में घुल जाए दिल का अफसाना, तो दिल कहे बस सुनते रहो ये सूना सूना सा तराना।

यावज़ें मुछाल रुमई और साथियों की फिल्म का नाम फाइव वेडिंग्स। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए।

अब सुनते हैं कोर युगल गीत पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम मोहरा। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कार्यक्रम है गाने नए तराने नए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के ठीक 11 बजे हैं।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान। साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: विविध भारती से आइए सुने कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: संघर्ष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी, नगमनिगार शकील बदायूनी, मौसिकार नौशाद। चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानवर से, आवाजें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे हैं। तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आनंद बख्शी की रचना है, फिल्म है महबूब की मेहंदी, और यही है श्रोताओं आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शायर आलोक यादव जी, जो भारतीय भविष्य निधि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस विविध भारती के स्टूडियो में आपके पास हूँ।
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है कि एक शायर का सबसे बड़ा परिचय उसकी शायरी होती है, तो सबसे पहले आपके दो चार शेर सुनते हैं, फिर बातें करते हैं।
2: बिल्कुल
1: इरशाद।
2: एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं अपने, कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा।
1: वाह, नई नस्लों के हाथों में भी
2: ताबिंदा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में,
1: दश्ते जुनू में,
2: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह, कोसारों पर पाइंदा रहेगा, क्या बात है, शानदार है।
2: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, अच्छा गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है।
2: जी एक दो शेर और एक गजल के, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे।
1: वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पिटा ले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह, बड़ी बात है।
2: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
1: वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है।
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में,
1: जी
2: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह,
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी,
1: जी
2: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे।
1: वाह आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे, क्या बात है।
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
1: तो दर्द क्या,
2: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया,
1: जी
2: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, इतने प्यारे शेर आपने कहे और गजलों की दुनिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय दुनिया है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, तो गजलों के रास्ते पर आपने कब चलना शुरू किया था?
2: जी दरअसल मैं कविता लिखने लगा था जब स्कूल में था मैं,
1: जी
2: उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने कविता के साथ कहानी भी लिखी कुछ, जो उस दौर के सबसे लोकप्रिय अखबारों में छपी और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई। शायरी की तरफ और गजल

0: एमबीए चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स था और उस दौर में बहुत कम लोग एमबीए करते थे, मुझे इसके बारे में पता लगा और मेरा रुझान था, मैंने एमबीए किया उस समय।
1: तो उसके बाद पेशेवर दुनिया की ओर नहीं गए?
0: बिल्कुल गया मैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, लेकिन शुरू से लगन ये थी कि सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से था कि तैयारी करनी है।
1: तो ब्रेक लिया?
0: ब्रेक लिया मैंने जॉब से, और ब्रेक लेके फिर मैंने तैयारी शुरू करी।
1: कितने बरस तैयारी की?
0: बहुत साल तैयारी की मैंने 93 से लेके 98 बैच में मैं इसमें आया।
1: ओहो जी, तो कुछ नाकाम अटेम्प्ट थे या क्या?
0: बिल्कुल नाकाम अटेम्प्ट थे, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट रहे।
1: जी जी,
0: यूपीएससी आसानी से घुसने नहीं देता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन राह है
0: जी,
1: है ना, वो आग का दरिया है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस दौरान जब आप यूपीएससी की पढ़ाई में मुब्तिला थे, क्या कलम मचलती नहीं थी लिखने के लिए?
0: हाँ बहुत, बेशक ऐसा होता था, कई दौर ऐसे आए, कई समय ऐसे आए कि लगा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले इस मकसद को हासिल कर लिया जाए, ये पूरा कर लिया जाए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफी समय लग गया।
1: अच्छा।
0: और मैंने दोबारा जो लिखना शुरू किया है वो 2012-13 में फिर से लिखना शुरू किया।
1: आपने बताया कि ये जो नाकाम अटेम्प्ट थे और एक जदोजहद का सिलसिला समझ में आता है
0: जी,
1: बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करे होंगे, क्योंकि पूरा सिनेरियो होता है, एक हॉस्टल या एक किराए का कमरा, एक ट्रांजिस्टर,
0: बिल्कुल
1: एक टेबल,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये सिलसिला जिससे आप भी बाकायदा वाकिफ होंगे, वहां रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साथी होता है,
0: बहुत बड़ा।
1: और आप एक कामयाब यूपीएससीएन हैं
0: जी,
1: तो क्या सलाह, एक एक जो ज्ञान का तत्व निचोड़ क्या देंगे आप अपने अनुभव का, ताकि उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी रोशनी मिले?
0: देखिए, किसी भी खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है, ये लड़ाई लंबी है।
1: आशा और निराशा के बीच जिस तरह का तनाव का सिलसिला है, उससे कैसे निपटें ये बच्चे?
0: उससे निपटने के लिए आपको कोई अच्छा शौक रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे पढ़ने का हो। मैंने लिखना जरूर छोड़ा, बट पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने। और यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो हिंदी लिटरेचर था।
1: ओके
0: जी,
1: तो ये बड़ा कठिन,
0: हिंदी लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था।
1: हाँ, तो ये कठिन सिलसिला चुना था आपने
0: जी,
1: है ना, क्योंकि अमूमन लोग जो है
0: पॉपुलर था मेरे लिए
1: जी। यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाने वाला दिन और उसकी कैफियत बताएं।
0: एक बहुत खूबसूरत दिन था वो, और ये लगा कि जो सपना था वो मैंने, मेरा साकार हुआ, तो खुशी बहुत थी, आंखों में आंसू थे।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस निकाल के फिर इंटरव्यू, कई लोग तो मेंस पे अटक जाते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं, छन जाते हैं, तो ये बड़ा ही चांद को छू लेने जैसा।
0: और इस दौरान मैं फिर एक बार कहूंगा कि आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने युववाणी ज्वाइन किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान भी आकाशवाणी को मैं जरूर सुनता था, रेडियो को जरूर सुनता था, मेरा एक छोटा ट्रांजिस्टर था और उस ट्रांजिस्टर पे गाने जब बजते थे तो मन बिल्कुल खुश हो जाता था।
1: बिल्कुल, वो एक
0: तरोताजगी मिल जाती थी
1: जी। एक नई जिंदगी होती है जिम्मेदारियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की
0: जी।
1: मैं समझ पाया जब आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगा वापस लिखना शुरू करने में, तो वो जो शुरुआती साल थे वो कितने उबड़ खाबड़ थे?
0: आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल
0: जी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायरी की तरफ मेरा रुझान था और एक जबरदस्त आकर्षण था गजल के प्रति, तो मैंने फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुझे इस फन को सिखा दे। और उस समय मेरी मुलाकात हुई अकील नुमानी साहब से, जो कि बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे सिखाना कबूल किया।
1: और ये तो गजलों की बहुत पुरानी उर्दू शायरी की परंपरा है कि आपके उस्ताद हो जिनसे आप मश्क करें कि भाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सिलसिला
0: जी। तो उन्होंने मुझे इसका अरूज सिखाया और फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाया। इसके साथ साथ एक वहाँ बरेली में सरदार जिया साहब थे, उन्होंने भी मेरी तरबियत की और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया। और उनके रहते हुए ही मेरा पहला जो संग्रह था उसी के नाम 2016 में आया
1: जी। जी, कितनी सुंदर बात होती है अपनी किताब अपने हाथों में आना
0: जी, बेशक।
1: तो वो दिन कैसा था जब किताब पब्लिश होके उसकी प्रतियां आपके पास आ गई?
0: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं किताब अभी लाऊं। मेरे अंदर यह था कि पहले अच्छी गजलें और कहूं और जब एक जखीरा तैयार हो जाए तब इत्मीनान से सोच के लाऊं।

0: कि उसमें अच्छी गजल जाए। लेकिन हमारे उस्ताद का भी कहना था, और हमारे जो दूसरे उस्ताद थे सरदार जी साहब, वो काफ़ी चाहते थे कि पहली किताब आ जाए, तो हम इस किताब को लेके आए। और जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ।
1: वाह बढ़िया।
0: मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी शायर या किसी लेखक की पुस्तक का प्रकाशन जो है उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसको एक नया रूप मिलता है, समाज के सामने उसका एक नया रूप आता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। तब तक क्या आपने मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था?
0: नहीं, छोटी नशस्तों में पढ़ना शुरू किया था मैंने।
1: जी, ये जो सिलसिला होता है महफिलों में पढ़ने का,
0: जी,
1: इसके लिए एक अलग तरह का हुनर और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए।
0: बेशक।
1: तो उस रास्ते पर जब आप चल पड़े तो उसके तजुर्बात हमारे साथ शेयर करिए।
0: शुरुआत दौर में बहुत मुश्किल होती है कि आप मंच पे खड़े होके माइक पर जब पढ़ते हैं तो खासतौर से गजल पढ़ते हुए लगता है कि कहीं कोई लग्जिश ना हो जाए और कहीं जरा सा चूके और लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया, तो उस सबसे बचने के लिए एक तनाव दिमाग में रहता था। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ओवरकम किया मैंने, और फिर प्रस्तुतियों में भी अपने कुछ निखार आया, थोड़ा बेहतर हुआ जैसा लोग बताते हैं। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूं और अभी बहुत सारा रास्ता मुझे तय करना है।
1: अब मुझे ये बताएं कि जब आप अब पढ़ते हैं और आपके चारों तरफ कुछ जाने माने शायर मौजूद होते हैं जो बरसों बरस से पढ़ रहे हैं और शायरे में मौजूद हैं, जिनको आप पहले सुना करते थे,
0: जी,
1: तब दिल में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, तब भी दिल में ये चलता है कि कुछ मैं गलत ना बोल जाऊं, कुछ गलत कहना जाऊं, और ये भी इच्छा रहती है कि वो मेरे शेर को गौर से सुने और अगर अच्छे हों तो उस पर दाद दें।
1: इस तरह के अनुभव होंगे, वो हमारे साथ बांटिए।
0: कई बार ऐसा हुआ, जैसे फरत एहसास साहब हैं, उन्होंने मेरे एक शेर की तारीफ की जो मेरा दूसरा संग्रह है कलम जिंदा रहेगा, उस पर उन्होंने लिखा भी था, और मुशायरे में भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा एक शेर था जिसको उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि बिल्कुल सही इसमें इस्तेमाल हुआ। वो शेर था कि मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब,
1: ओहो,
0: मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा।
1: वाह, अच्छा है, अच्छा है। तो इस शेर की फरत एहसास साहब ने तारीफ की, और बजाय इसके कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल गजलों में अच्छा नहीं मानते। आधुनिक गजल अपने, ये कहना चाहिए कि जो पारंपरिक ढांचा है उससे बहुत आगे निकल गई है और वो अपने समय और समाज की बात कर रही है।
0: जी,
1: आप किस तरह से अपने शेरों में अपने समय और समाज की बातों को पिरोते हैं?
0: देखिए, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ और मेरे जो एहसासात हैं वहीं से निकल के आते हैं, चाहे वो मेरा दफ्तर हो, चाहे वो लोग हों जिनको मैं सर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने एक शेर कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: वाह, कितनी प्यारी लाइन है।
0: तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
1: हाँ।
0: बेकार खुशामद में ना यूं वक्त गंवाओ।
1: वाह, ये तो सीधी सीधी बात हो गई है।
0: ये सीधी सीधी बात हो
1: ये मतलब आपने अपने दफ्तर के लिए कहा है।
0: जी जी जी, ऐसे ही मेरी गजल है। मैं चाहूंगा कि दो चार शेर आपको पेश करूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहां से
1: जी
0: अपने विषय उठाता हूं।
1: जी इरशाद।
0: तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं
1: जी,
0: उनके लिए कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले चलनी बोले, जिसमें 72।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारी उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में
1: बहुत मशहूर
0: कहावत है। जी, तो मैंने कहा कि सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
1: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
0: छह दिन में भी 72 निकले।
1: ओ, उल्टी बात कही है।
0: उल्टी बात है।
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, जिनको हम सूप समझ रहे हैं
1: जी,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, छह दिन में भी 72 निकले। दफ्तरों में ना मिला एक इंसान।
1: वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले।
1: क्या शानदार है, क्या खूबसूरत। वाह,
0: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है,
1: क्षितिज ओझल है,
0: धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो सिलसिला है जहां आप अपने समय और समाज को अपने अशार में पिरोते हुए चलते हैं। पहली किताब से कुछ चीजें हमें सुनाइए प्लीज।
0: जरूर, एक गजल के शेर सुनिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारी छोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं।
1: वाह,
0: थक चुका हूं और कब

0: तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं।
1: बढ़िया है।
0: आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं।
1: वाह,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
1: औजार देखे,
0: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं।
1: सुंदर, बहुत बढ़िया।
0: और है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पहली किताब से आपने एक गजल पढ़ी है।
0: जी जी, एक गजल है जो तत्सम शब्दावली के साथ में है हिंदी की।
1: जी जी,
0: मैं चाहता हूं उसको भी पेश करूं आपके सामने। पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण मैं,
1: वेदना का व्याकरण,
0: पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण मैं, हूं समर में आज भी ये रे क्षण मैं।
1: वाह,
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो,
1: जी
0: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटे आवरण में।
1: क्या बात है।
0: रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, रच रहा हूं आज मैं कोई गजल फिर, खोल बाहें कर रहा हूं दुख ग्रहण में।
1: वाह,
0: ये निरंतर रत जगे चिंतन ये लेखन, ये निरंतर रत जगे चिंतन ये लेखन, कर रहा हूं अपनी ही वै का शरण में।
1: वाह,
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी,
1: जी
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, प्राण लेकर भागता सहमा हिरण में।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा,
1: एटम बम,
0: शक्ति का हूं पुंज एटम बम सरीखा, देखने में लग रहा हूं एक कण में।
1: वाह, बहुत अच्छा है।
0: है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिक्रमण में।
1: क्या बात है।
0: ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में।
1: वाह वाह, इसमें पूरी साइंस वाइंस आ गई है।
0: इसमें तीन धर्मों के बारे में आ गया। देखिए
1: दर्शन तो आया पर मैंने साइंस भी देखी कि हाँ प्रॉपरली साइंस आई है इस गजल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म का वरदान हूं नूरे खुदा हूं, व्योम का हूं तत्व धरती का लवण में। और एक दो गजल के शेर कुछ और पढ़ देता हूं मैं आपके सामने के। बिन बात अगर रूठ हो जाए तो करूं क्या,
1: जी
0: बिन बात अगर रूठ हो जाए तो करूं क्या, और वजह भी कोई ना बताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, वो मुझसे जो नजरें ना हटाएं तो करूं क्या? क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, और यार भी एहसान जताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, वाह।
0: होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, वादा भी करें और ना आए तो करूं क्या।
1: वाह,
0: मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, हर बात मेरी हंस के उड़ाएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि से है, ये संगठन कितना मायने रखता है और आज आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करता है, उनके पीएफ के माध्यम से, उनकी पेंशन के माध्यम से, और एक ईडीएलआई नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से। इस समय 7 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं जो लाइव, जो सब्सक्राइबर हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन आता है।
1: जी जी, बहुत बड़ी तादाद है,
0: बहुत बड़ी तादाद है। और इनकी पेंशन और इनके पीएफ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक खासतौर से मैं अपनी सर्विस के बारे में कहूँगा कि हमको दोनों मौके फराहम होते हैं कि हम स्टेट की जो पावर है वो भी रखते हैं और साथ में एक रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, साथ में हम जो है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम करोड़ों जो कर्मचारी हैं जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं
1: उनकी बेहतरी,
0: उनकी सेवा कर रहे हैं।
1: जी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो अपने काम के बीच में लिखने का वक्त कैसे निकलता है?
0: देखिए, इसीलिए शायद मैंने शायरी को चुना
1: जी,
0: क्योंकि शायरी ये मुझे ये सुविधा देती है, ये सहूलत देती है कि मैं एक शेर कभी भी कह सकता हूँ और उसको नोट कर सकता हूँ या दिमाग में रख सकता हूँ। दिमाग से तो निकल जाता है, तो अक्सर वो
1: लिखना ही पड़ता
0: स्लिप
1: है।
0: में स्लिप में लिख लिया, जो दिमाग में रहता है वो अक्सर निकल जाता है। तो कई बार होता है काम करते करते भी कुछ ऐसे एहसास आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनसे एक शेर का जन्म होता है, वो शेर उस समय लिख लिया जाता है, उसके बाद जब कभी मौका आता है तो उसमें आगे के शेर कहे जाते हैं।
1: क्या बढ़िया बात है, अपनी किताबों के बारे में बताइए।
0: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उसी के नाम मेरा पहला संग्रह था जो 2016 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आया था।
1: जी जी,
0: उसके बाद 2022 में कलम जिंदा रहेगा मेरा संग्रह था दूसरा
1: जी,
0: जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ।
1: जो
0: पहला संग्रह था उसी के नाम, वो उर्दू में भी आया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी आया नश्तालिक में, उसे अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया था। और तीसरा संग्रह जो है वो लफ्ज चारागरी भी करते हैं के नाम से, इनफैक्ट ये संग्रह मैंने नहीं किया था बल्कि बहुत मशहूर लेखक शायर हैं कवि हैं ओम निश्चल जी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत अच्छे लेखक आलोचक हैं, उन्होंने एक सीरीज निकाली है सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली से, उसमें दौरे हाजिर के जितने भी अच्छे शायर हैं उन सब पे एक एक किताब निकाली उन्होंने। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी इस सीरीज में,
1: इस सिलसिले में उन्होंने चुना आपको
0: जी।
1: तो इसमें से कुछ सुनाइए प्लीज।
0: हाँ, लफ्ज चारागरी भी करते हैं ये इस जो संग्रह है उसका टाइटल है। मैं आपको एक गजल सुनाता हूं कि मौसम के बदलाव दिखाऊं
1: जी,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं तुम आओ तो घाव दिखाऊं।
1: वाह वाह,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं तुम आओ तो घाव दिखाऊं, जहरीले लहजों में उलझे, जहरीले लहजों में उलझे रिश्तों के उलझाव दिखाऊं।
1: वाह,
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं।
1: वाह,
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं, घर का आंगन सिमट गया है, घर का आंगन सिमट गया है, रिश्तों का बिखराव दिखाऊं।
1: वाह वाह,
0: देखो तो बंजर बस्ती में, देखो तो बंजर बस्ती में हिजरत का फैलाव दिखाऊं।
1: वाह वाह वाह,
0: आलोक अब आवाज ना आहट, आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं।
1: बढ़िया है, बहुत अच्छा।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं। एक गजल और है कि फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी
1: जी,
0: फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी।
1: वाह,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं,
1: रूह पे भी छाले हैं,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी।
1: वाह वाह वाह,
0: इस जबां पर ही नहीं रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी।
1: वाह वाह,
0: बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी।
1: क्या बात है, वाह,
0: उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है
1: जी,
0: वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई
1: शनासाई थी। क्या बात है,
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं।
1: आह प्यारी लाइन,
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: वाह क्या बात है, कितने अच्छे अशआर आपने सुनाए। आलोक जी, इतनी सारी बातें हुई, आपकी पसंद के एक गाने की बारी है चलते चलते, तो बताइए कि इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: वाह, साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है कभी कभी, खयाम साहब का संगीत इस गाने में सुनते हैं।

0: आलोक जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपकी रचनात्मक की यात्रा के बारे में हमने जाना और आपके अशार भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि आज मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ कि मैंने विविध भारती का स्टूडियो देखा, विविध भारती का ऑफिस देखा, जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनता आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आईची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम
1: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज इन फिल्म प्यार झुकता नहीं। एस एच बिहारी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ।

0: सच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: अनजान की रचना आपने सुनी है, चित्रगुप्त का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी बलम परदेसिया।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुहाग। फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का।
2: श्रोताओं, विविध भारती का सफर जारी रहेगा। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन का 1 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे आने का आह्वान किया। श्री मोदी ने नवनियुक्तों को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के युवा सामर्थ्य की सराहना हो रही है। श्री मोदी ने युवाओं से नागरिक देवो भव की भावना को सर्वोपरि रखने को कहा। ये मेले देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित रोजगार मेले में 51 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्ति पत्र विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को दिए गए। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: प्रदेश में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जनसेवा और सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोटपूतली बहरोड जिले के पावटा उप जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा कर्मियों और आमजन ने रक्तदान कर लोगों को नियमित रक्तदान के लिए जागरूक किया। जिले में 13 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। जैसलमेर में नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रेरणादायी वीडियो सामग्री दिखाई जा रही है। पाली के सादड़ी में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सवाईमाधोपुर में आज सातों पंचायत समितियों में विशेष जनसेवा शिविर लगाए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 कल पुनः आयोजित होगी। परीक्षा प्रदेश के 11 जिलों में 666 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 2,18,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी और दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। जयपुर में सबसे अधिक 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जोधपुर में 81, अजमेर में 74, उदयपुर में 64, भरतपुर और कोटा में 58 केंद्र हैं। परीक्षा 2021 में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद दोबारा कराई जा रही है। राज्य में आज राधा अष्टमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राधा कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, श्रृंगार और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी राधा अष्टमी के अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में गीता भवन, गोपीनाथ मंदिर और अन्य कृष्ण मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। भरतपुर में बांके बिहारी, गोपाल जी, राधा रमन जी और मोहन जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों

0: में फूल बंगला की झांकियां सजाई गई हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: आपको बतानी है श्रोताओं, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, संघर्ष फिल्म से। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नगमा था। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीत किसका है, और इस गीत में भी यही आपको बताना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी जिंदगी की कश्मकश हमें उलझाती जरूर है, मगर यही उलझने हमें अपने दिल की आवाज सुनना भी सिखाती हैं। कुछ चाहते अधूरी रह जाती हैं, कुछ आंखें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हैं, और कुछ रास्ते तड़पा कर भी हमें नई मंजिल तक ले जाते हैं। शायद हर कश्मकश के पीछे कोई सीख, और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा छुपा होता है। आज की इबारत भी जैसे दिल से यही कह रही है, उलझ रहिए नहीं, बस चलते रहिए, रास्ते खुद अपनी मंजिल बता देंगे। एक और श्रोता लिखते हैं, दिलों की राहें भी अनोखी इम्तहान लेती हैं, कभी मृदुल सफलता तो कभी कसहली कड़वाहट से भरी कश्मकश भंवर में उलझ इंसान स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है और स्वयं को ढूंढता है। नूर के लिए तरसती निगाहों में उसे मंजिल भी एक मरीचिका सी प्रतीत होती है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज जो शब्द हैं, कश्मकश, मोहब्बत, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, रात, इन शब्दों पर आधारित गीत सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की कश्मकश दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझती है, ये दिन ये रात कुछ एहसास दिला जाते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, अक्सर मेरा मन कहता है, अक्सर कोई लड़का इस हाल में, एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। यानी कश्मकश को लेकर जो भी कुछ गीत इनके जहन में आए हैं वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की इस खूबसूरत कश्मकश दिल की राहों, चाहतों और सही गलत के दो राहों को बयां करता एक बेहद गहरा फिल्मी गीत जो है वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती है कि जिंदगी की ये उलझने और जज्बात ही इंसान को भीतर से मजबूत

और संवेदनशील बनाते हैं। जीवन के अनकहे एहसास, दिल की कश्मकश, दिल हमेशा किसी न किसी उलझन में उलझकर सही राह तलाशता है। कभी कभी आंखें खामोश रहकर भी एहसान और दर्द बयां करती हैं। चाहतों, उम्मीदों और ख्वाहिशें ही इस सफर को खूबसूरत और जिंदा रखती हैं। आप अगर कलाकार भी बता दें तो क्या ही अच्छा है।

सुनील दत्त और वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया आम्रपाली फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत में तर्ज थी शंकर जयकिशन की, और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था तर्ज थी नौशाद की। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक दिया है। एक श्रोता लिखती है कि जीवन में जब दुविधा, मानसिक तनाव या खींचातानी होती है, तब समझ में नहीं आता क्या करें। उलझन को सुलझाने में भले ही देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर सदा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, इस गीत को इन्होंने पसंद किया है। और कश्मकश को लेकर या कश्मकश के बाद जो मंजिलें मिलती हैं उसके उजालों को लेकर बहुत सारे गीत हमारे श्रोताओं ने भी सुझाए हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो बताइए श्रोताओं कि जब किसी अजनबी से पहली बार बात होती है तो बड़ी कश्मकश होती है, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि कभी आपको किसी से बात करने में कोई

0: कश्मकश हुई, कोई उलझन हुई, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी थीं कि वो भी इतनी याद आईं कि वो भी एक कश्मकश का कारण बन गई। और एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि दोस्ती और प्यार, इन दोनों के बीच अक्सर कश्मकश चलती है, किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? एक श्रोता लिखती हैं कि नई मंजिल पाने के लिए कश्मकश भरी जिंदगी में कई राहों को पार करना पड़ता है। दो प्रेमियों का मिलन वो खूबसूरत पल मन में उलझन में भी डाल देता है मन को, पर उस मीठे एहसास को पाने के लिए मन में हलचल मचा देती है और आत्मविश्वास जाग उठता है। एक ना एक दिन नई मंजिल मिलेगी, नया सवेरा होगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत, कश्मकश, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, नूर, रंग, आंखें, आंसू, ये सारे शब्द हैं तो इनसे गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जो भी कश्मकश होती है वो सीधे तौर पर दिल की राहों से ही होकर गुजरती है। चाहत या तृष्णा ही इस कश्मकश का मूल कारण है। दिन रात इन्हीं चाहतों में उलझे रहना माया का प्रभाव माना जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उलझन दुख का कारण नहीं होती। कुछ उलझनों को सुलझाने में जिंदगी बहुत गहरे सबक सिखाया करती है। और भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। दो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उनके जवाब फटाफट आप भेज दें श्रोताओं।
1: तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

आप सुन रहे थे ये गीत आराधना, फिल्म का कलाकार आपको बताने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी केवल सीधी लकीर नहीं बल्कि ये चाहतों, एहसासों और कश्मकश से भरे दिन और रातों का ये खूबसूरत ताना बना है। ये कश्मकश इंसान को अक्सर सही और गलत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां मन में कई तरह की हलचलें और सवाल उठते हैं। जीवन की ये उलझने और तड़प व्यर्थ नहीं जाती, ये हमें संघर्ष के असली मायने सिखाकर हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी की यही कश्मकश ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां दिल की राहों पर चलते हुए चाहते, यादें और फर्ज आपस में टकराते हैं, जो कभी तड़पाते हैं तो कभी चंदन की खुशबू की तरह छूकर गुजर जाते हैं। ये कश्मकश हमें कभी कभी सही और गलत के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है, जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता। ये उलझने हमें तड़पाती जरूर हैं, पर यही तड़प हमें मोहब्बत का मर्म और गम को दवा बनाना सिखाती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब हम दिल की राहों पर कदम बढ़ाते हैं तो उम्मीदों का एक नया आसमां खुलता है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, प्यार, सुकून, सफलता और रिश्ते, लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। वो हमें उन मोड़ पर लाखड़ा करती है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। यही वो बिंदु है जहां से कश्मकश की शुरुआत होती है। तो ये तो बताइए कि जब आप ऐसे उलझनों में होते हैं तो अपनी बातें किसी को कहते हैं या फिर खुद से ही फैसला लेना ठीक समझते हैं? आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं।

0: के आ जरा आ जा रे आ जरा।
1: हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रोताओं कि जब कश्मकश होती है तो फैसला तुरंत ले लेते हैं। ये फैसला कुछ लोग बड़ी सोच समझ के बाद लेते हैं, यानी सोचने समझने के बाद लेते हैं। तो आप किस तरह से फैसले लेते हैं जब आपको कोई कश्मकश होती है? और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि जब आप किसी कश्मकश में थे तो किस तरह से निकले, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ये जो कश्मकश होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में क्या रेडियो पर सुनाई देता कोई गीत आपकी कश्मकश को, आपकी उलझनों को कुछ कम करता है? तो आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, दोस्ती और प्यार वैसे तो दोनों की जरूरत जरूरी है, पर दोनों में से एक को चुनना हो तो हमारा दिल दोस्ती को चुनेगा। तो इन्होंने अपनी बात तो कह दी, हमारे बाकी श्रोता भी जरूर लिखें कि दोस्ती और प्यार दोनों में से अगर आपको चुनना हो एक को, तो आप किसे चुनेंगे? और एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन साथी ही अगर आप का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो क्या बात है। और आराधना का गीत इन्हें पसंद आया। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक कश्मकश का सामना करना पड़ा था जब मेरी बेटी बीए इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी और टीवी भी न्यूज रीडर से प्रभावित तो हो पत्रकारिता करियर करना चाहती थी, किंतु मुझे उसकी दक्षता का अनुमान था, अतः बहुत समझा बुझाकर इस प्रभाव को दूर किया और इंग्लिश में पीजी करने को कहा। और आज वो 14 साल से आईटी सेक्टर में सीनियर पोस्ट पर है। ये उलझन दूर हुई तो क्या ही अच्छी बात है। जी हाँ, सही फैसला सही वक्त पर बहुत जरूरी होता है और यही कश्मकश, यही उलझनें फिर खुशियों में या मंजिल को पाने के लिए तब्दील हो जाती हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का मुकेश की आवाज में। कमर जलाल अबादी के बोल थे, आपको संगीतकार बताने हैं और कलाकार बताने हैं। श्रोताओ, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी एक झूले की तरह होती है, जैसे झूला जितना जल्दी पीछे जाता है ठीक उतना ही आगे आता है। ठीक इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कभी पूरी हो जाएगी, कब पूरी हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी होती है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि जीवन की इस उतार चढ़ाव में, जीवन के इस उतार चढ़ाव में न जाने कितनी उलझने आती हैं और जाती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हम चाह कर भी नहीं सुलझा सकते, एक डोर सुलझाते हैं तो दूसरा कहीं और उलझ जाता है। और कैसे सुलझाऊं मैं इस उलझन को, बताए कोई राहें धुंधली सी। तो कुछ इन्होंने अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो कश्मकश के हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? इस गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ, और इसके पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी कलाकार आपको बताने हैं।

नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रात और दिन फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सबसे ज्यादा कश्मकश का समा अपने होने वाले साथी और उसके परिवार से बात करने में होती है। बहुत सारी फीमेल श्रोता मेरी बात से सहमत होंगी, ऐसा इनका लिखना है। शायद किसी नए व्यक्ति के बारे में ये लिख रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सच्चा प्यार ही दोस्ती का आधार है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत हो सकते हैं राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, चंदन साबुदन। चंदन साबुदन गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं, लेकिन आपने जो बाकी के दो पहलू दो बातें लिखी हैं राही मनवा यानी गीत के विषय में, दुख की चिंता क्यों सताती है या रात भर का मेहमा अंधेरा, तो ये तो कश्मकश के एक पहलू हो गए। कश्मकश के बहुत सारे पहलू हैं श्रोताओं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जिंदगी कश्मकश है या कश्मकश ही जिंदगी है, कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मकश तो हर पल साथ रहती है। एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है जब ऐसी कश्मकश होती है, तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की सुननी चाहिए। कलाकार बताएं और संगीतकार।

राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आपने सुना और ये तर्ज थी रवि की, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश कभी भी हुई तो सोच समझ कर उस समय जो सही लगा वो किया, पर कुछ निर्णय बाद में गलत भी सिद्ध हुए। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज में ये गीत जो हमने पहले आपको सुनवाया था इन्हें बहुत पसंद है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि जिंदगी आप के चाहे अनुसार ही चल सकती है क्या, भविष्य के झरोखों में क्या है इसका सिर्फ पूर्वानुमान ही किया जा सकता है, उसी के अनुसार कश्मकश के समय निर्णय लिया जा सकता है, आने वाला समय ही बताता है कि ये निर्णय सही था या गलत। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपकार का गीत था, भारत कुमार यानी मनोज कुमार पर फिल्माया गया। जी हाँ, आशा पारेख भी नजर आती हैं। तो आपसे हमने पूछा था दिल और दिमाग दोनों में से आप किसकी सुनते हैं या किसकी सुनना चाहेंगे, और एक सवाल और आपसे पूछते हैं श्रोता कि क्या जब हम कॉलेज में थे तो उन विषयों को लेकर कोई कश्मकश आपके जहन में था? इस गीत को पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए।

कॉलेज की जब शुरुआत होती है श्रोताओं, तो विषयों को चुनने में बड़ी कश्मकश होती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर लिखें। मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती और प्रेम में एक चुनना हो तो दोस्ती ही चुनेंगे, दोस्ती की तो बात ही अलग है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब काफी देर तक क्लासरूम के बाहर हम और एक अन्य लड़की टहल रहे थे। थोड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए हमने पूछा, न्यू एडमिशन? तो उसने भी हाँ करके सर हिलाया, फिर बातचीत शुरू हुई। वही लड़की आज तक अच्छी सहेली है। जी हाँ, अच्छे साथी तो बहुत जरूरी होते हैं। क्या आपका भी कोई कॉलेज में अच्छा साथी बना जिसे आप शुरू में बातें करने से बहुत हिचकिचाते थे? ये फिल्म आपको बतानी है।

सवाल का जवाब बड़ी ही शिद्दत से दीजिए श्रोताओं, कि क्या आपके मन में इस समय क्या कश्मकश चल रही है?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे साथ ही रे, जिंदगी दिलों को जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को तोड़ती भी है। जब जिंदगी की उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, तब दिल कहता है जाऊं कहां बताए दिल। एक पैरडी जैसे इन्होंने बनाई है श्रोता, और हम इनकी सराहना करते हैं, अच्छा लिखा है इन्होंने। और हमारे जितने भी श्रोता हैं, कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उन सभी का बहुत बहुत तो शुक्रिया हम कहते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझने होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था प्रेमा नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया है। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को के भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर ये कार्यक्रम जो है जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है। संगीत जगत में हमारे रग रग में खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। आकाशवाणी।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में हजारों बार कश्मकश आए, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ, फिर कोई गलत कहे या सही। इंसान का अपना भी कुछ सोच होनी चाहिए, अपनी

मोहम्मद रफी की आवाज थी और सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि विविध भारती मुंबई के श्रोता हैं हम और जीवन में आए कश्मकश और समस्याओं को इसे सुनकर हल चुटकियों में खोज लेते हैं। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं अहंकार पर। दोस्तों अहंकार इंसान का वो भाव है जो उसे उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत इंसान की विनम्रता उसे बड़ा और विराट बनाती है। आपके हाथ में है विकल्प, अहंकारी बनकर छोटा बनना है या विनम्र होकर विशाल बने रहना है। समय कभी एक सा नहीं रहता है। अच्छे समय में इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छे समय का आनंद लेना चाहिए। अहंकार आपको एक दिन गर्त की ओर ले जाता है।

दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग वक्त को स्थायी मान लेते हैं, ये उनके विचारों की भूल है। आज आपके पास सब कुछ है, कल हो सकता है कुछ ना हो। इसलिए जब किसी से कोई बात कहें, किसी से बुरा बर्ताव करें, तो ये ध्यान रखें कि आपके गुरूर से चूर बातों से सामने वाले का मन कहीं आहत तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग अहंकार में डूबकर आत्मश्लाघा में लीन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इन बातों से बचना चाहिए।

दोस्तों, जब सचमुच किसी में काबिलियत होती है तो लदे हुए फल की तरह वो व्यक्ति विनम्र होकर झुक जाता है। कई शिखर पर पहुंचे व्यक्तियों में गुरूर जरा भी नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास जरूर होंगे जो बिना किसी लियाकत के अपनी काबिलियत के डंके पीटते नजर आएंगे। ये इंसान का अहंकार है। जब भी आप किसी से कुछ कहें तो अहंकार से भरकर नहीं बल्कि नरमी से पेश आए तो आप एक नेक इंसान कहलाएंगे। आइए त्रिवेणी तट पर अपने भीतर के अहंकार को दूर भगाने की कोशिश करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु

0: गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर

0: क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
6: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
2: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
6: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: फिल्म ससुराल का गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुमराह फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में।
1: इसे रंग बदल

0: राजकुमार फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जय किशन ने।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

दुल्हन एक रात की इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज मदन मोहन की तर्ज थी। गीत रचना राजा मेहदी अली खां की थी और सदाबहार नगमे कार्यक्रम की श्रोताओं यही थी आखिरी पेशकश।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आपकी फरमाइशें और आपके पत्र और होता है आपको बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार। तो कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो सेट के जरा करीब आइए, पास लाइए और जरा ध्यान से सुनिए। कहीं आपके पसंदीदा गीतों में से तो कोई गीत आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम मन चाहे गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल पायल, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मोताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की यह फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अंबेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद ढेरे, और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रापुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता हैं ये, मनमोहन राजावत, मधु राशि, चित्रंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था। प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक, और इसी गीत को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमरा और बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोला बाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा, नाहिद फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निम्मी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, गणेश और संजना परी मालती स्वाति प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा। आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोताओ। और यही है आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और अब डीजे संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: ಭಾರತಿ
1: नाट्य तरंग, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
2: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी हो

सुना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासवदत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महाअमात्य योगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति, और उदयन द्वारा वासवदत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासवदत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासवदत्ता।

0: महामहति योगेंद्रायण, कैसा वन है ये? हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी चलते चलते थक गई हूं मैं। ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्या वासवदत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र? सोचकर कांप उठती हूं। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वनगमन, उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाएं, सिहर जाती हूं उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप ना होते तो क्या होता मेरा? और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता, मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाती योगेंद्रायण।
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा, जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस्वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका हैं।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वह तपोवन है, क्यों न हम वहां चलें?
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार छोड़ दे, आर्य हट जाए, मार छोड़ दे।
1: आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है, पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं?

0: इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
1: मार छोड़ दे आरी, हट जाए, मार छोड़ दे।
2: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
3: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
4: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
0: ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
3: जी,
0: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
3: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
0: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व साक्षात्कृत हो रहा है।
5: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
6: स्वागत है राजकुमारी।
7: स्वागत है राजकुमारी।
6: आगे तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
7: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
6: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य।
8: बहुत सुंदर आश्रम है, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
5: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
7: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
8: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्युत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूत भेजा है।
9: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूत भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
6: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
3: राजकुमारी की जो इच्छा।
10: आश्रम के तापसजन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
0: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
6: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
7: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
3: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
0: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में है। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
6: फिर क्या चाहते हैं आप?
0: आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती है।
3: चरित्र रक्षा? क्या चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन थाती की रक्षा?
6: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहें वही संपन्न हो।
3: जो आ गया राजकुमारी जी।
0: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती, जाओ अवंती के देवी के समीप जाओ।
8: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका।
6: चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
8: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
6: आओ अवंती के, हमारे साथ चलो।

0: वैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था कि वैसा ही संपन्न हुआ जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीत कर सिंहासनारूढ़ हो गए। तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष करेंगे और ऐसी भविष्यवाणी भी है। समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
1: बहुत थक गया हूं, मध्यान्ह हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाऊं, किधर जाऊं? अरे ये सामने शायद तपोवन है। हां तपोवन ही है। निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
2: ब्रह्मचारी पधारें।
3: आश्रम सबका समान रूप से होता है। हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान। लीजिए शीतल जल ग्रहण करें।
1: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
3: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
4: प्रणाम।
1: आयुष्मान भव।
3: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
4: प्रणाम।
3: और ये इनके भाई।
5: प्रणाम मुनिवर।
3: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
4: प्रणाम मुनिवर।
1: आयुष्मान भव।
5: ब्रह्मचारी आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
1: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
5: अध्ययन समाप्त हुआ?
1: नहीं तपस्विन, नहीं।
5: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
1: वहां एक दुखद घटना घटी।
5: वो क्या?
1: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
4: स्वामी।
1: अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
4: मेरे स्वामी।
1: जब राजा अन्यत्र आखेट खेलने गए तब तब तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
4: क्या?
5: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
1: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
4: अग्नि प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूं, उसी के बल आज जीवित हूं। आज भी उनकी प्रेम वीणा के स्वर

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित है।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंतिका विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंतिके?
3: ना रो ना रो अवंतिके। राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारिण फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और
4: हाँ वासवदत्ता, हाँ अवंती राजपुत्र, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य वासवदत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्नवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्नवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासोदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासोदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। वासोदत्ता, आप ये हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं।
4: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं, आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
2: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
4: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
1: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथ हो ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
5: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर पधारे राजकुमारी।
6: शांत बेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
5: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
2: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: ये रही तुम्हारी गेंद।
1: अवंती के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: इन्हें राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करें। क्या कह रही है जीजी?
1: सुन रही हूँ अवंती के। पर बताओ, हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
0: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
1: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
0: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
1: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
0: अच्छा अच्छा, महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
1: ये महासेन कौन है?
0: नहीं जानती। उज्जैनी के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
1: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
0: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य सेठी?
1: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
0: वत्सराज?
1: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
0: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
1: क्या क्या हुआ देवी?
0: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों?
1: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
0: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
1: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
0: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
1: अवंती की, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
0: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
1: ओह, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं?
2: कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी आपकी मंगनी हो गई।
0: मंगनी हो गई?
2: बधाई हो राजकुमारी।
0: आहो धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
1: वत्सराज उदयन के साथ।
0: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं?
1: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
0: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
1: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य, ज्ञान, वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
0: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। मेरा मन भी यही कहता है।
1: ओ राजकुमारी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: कुमारी पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़ मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है। आर्यपुत्र वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्य पुत्र को देख भर लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्य अवंतिका, आर्य अवंतिका जाने कहां गई। ओ

0: भी लता के नीचे शिलापट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
1: किस लिए चेटी?
0: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए लीजिए फूलों की टोकनी।
1: हाय, मुझे ये करना होगा, भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
0: अरे क्या सोच रही हैं? जामाता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
1: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
0: ऐसे हैं, ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
1: कहना क्या सुंदर हैं?
0: धनुष वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
1: अच्छा अब बस भी करो।
0: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
1: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
0: अच्छा अच्छा शीघ्र माला गूंथे,
1: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण? जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
1: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
1: नहीं नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
1: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन?
4: जल्दी करें आर्ये, जल्दी करें, सुहागिनें जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही हैं।
1: हाँ हाँ लो ये माला तैयार है।
0: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
1: आर्यपुत्र भी अब मेरे देर है।

स्वप्न वासव दत्ता, अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
2: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
3: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
2: जी,
3: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
2: जी,
3: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं
2: जी।
3: पर मैंने मतलब

0: सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे।
1: जी,
0: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
1: ये आपका बड़प्पन है,
0: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता, मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
1: जी
0: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ।
1: जी जी,
0: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है।
0: जी जी,
1: वहां तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई, और वहां पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
0: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
1: अच्छा।
0: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
1: अच्छा।
0: और पढ़ाई लिखाई, संगीत की तालीम, सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से।
1: जी।
0: फिर मुझे लगता है, अगर मुझे ठीक से याद है, तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्ना दा के साथ, मन्ना दा जी के साथ।
1: अच्छा।
0: आए मन्ना डे जी के साथ।
1: जी, जी।
0: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ। तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, बुलो सिरानी जी,
1: जी
0: उनको असिस्ट किया।
1: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजाते हैं।
0: हाँ। तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया। तो वहाँ पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
1: अरे क्या बात।
0: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
1: अच्छा।
0: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
1: जी जी।
0: बस फिर डैडी ने बहुत अपने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह। लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता।
1: जी जी।
0: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है, पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता डैडी कहीं वहां पीछे रह गए। बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
1: जी जी जी।
0: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे।
1: जी।
0: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
1: अच्छा।
0: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
1: जी जी
0: जी।
1: आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
0: जी।
1: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
0: बिल्कुल। मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स है यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही।

0: ही नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
1: जी
0: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी
0: बिल्कुल
1: में।
0: बिल्कुल
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।
2: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी।
1: जी,
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला,
0: जी
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है,
0: जी।
1: आई कहती थी मैं माँ को,
0: जी।
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े
1: है ना,
0: संगीतकारों का।
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के, वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी,
0: जी
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा जैसी
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल।
1: बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि
0: हाँ,
1: शायद नजर आती होगी
0: नहीं,
1: आपको।
0: होता है कलाकार है के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया उसका।
0: हाँ, आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी
0: हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: की पसंद का ही गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी,
1: जी
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी।
1: जी
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगा लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर,
1: जी
0: गुड्डी।
1: जी
0: तो पहले तो ये कि डांस डांस, तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से, वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या, 5-6 साल की थी
1: जी
0: और सारा म्यूजिक अपने, मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग
1: संग
0: चलूंगी,
1: चलूंगी।
0: तो उसका बिगनिंग म्यूजिक टररा पररा पररा पररा पररा पररा पप, वो
1: जी
0: सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग, और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी, कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे,
1: जी
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है।
1: जी
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत, पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था।
2: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
0: बात होगी तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ,
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया
1: हाँ
0: करते थे,
1: हाँ
0: ना
1: बिल्कुल
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते थे।
1: जी। और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता है,
1: देखिए
0: तो कुदरत ने शायद, हो सकता है
1: बिल्कुल
0: कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहां गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल। तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने, पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ
1: वाह,
0: माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो गए
1: अरे वाह, अरे वाह
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा।
1: जी
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक हाँ। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात। तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही है
0: ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं बस, मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस तो दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से, मैं 7 साल की थी तब,
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी,
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहाँ समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत, सही वक्त,
0: जी,
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा,
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा,
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था, तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी को,
0: मोरली,
1: है ना,
0: जी जी,
1: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई, तो उन्होंने कहा कि कोई

0: बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ। सिप्पी साहब, जिप्पी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी? सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
1: अच्छा,
0: बतौर स्क्रिप्ट राइटर्स।
1: जी बिल्कुल,
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स।
1: हाँ।
0: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना?
1: और सुपर डुपर हिट,
0: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे? तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से। पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को।
1: जी,
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है, है ना?
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे। सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे। शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत। तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा, तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पात पंचम तक लेके गए। बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई। मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डेकर। वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया।
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है। ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ। और सुमन जी आए
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे, हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको खुश

0: साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस
1: हाँ
0: वक्त,
1: हाँ
0: तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए
1: क्या बात,
0: नजराना।
1: वाह वाह
0: ये एक हमारे
1: जी
0: गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो उन
1: नजराना
0: हाँ
1: देते
0: एक
1: हैं,
0: नजराना
1: ये
0: देते
1: प्यार का
0: हैं
1: प्रतीक
0: बिल्कुल,
1: है, स्नेह का प्रतीक
0: और
1: है।
0: उनको एक प्रोत्साहन देने के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह,
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है, यानी
0: तो
1: आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी
0: बिल्कुल
1: साहब और सुमन
0: सच में
1: कल्याणपुर के साथ
0: ये
1: और
0: आज महसूस होता है
1: शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में
0: बिल्कुल
1: आपने गाया,
0: बिल्कुल
1: तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का, तो
0: बिल्कुल
1: कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल। और पता है
1: हाँ
0: मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुल।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी,
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता को यूं ही, तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हूं।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदा के नीचे यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
0: जी,
1: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया GPCP प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
0: जी
1: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
0: हर ज़बान,
1: और यही पूरा था ना GPCP प्रोडक्शंस, शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी
1: वही पूरा देखे खेला
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूं।
0: जी जी
1: देखिए
0: जी,
1: ये वक्त का खेला
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है।
1: एकदम
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: चले।
1: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त। थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बता ही रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ,
2: बिल्कुल,
1: बप्पी लाहिड़ी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
1: अच्छा।
2: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते
1: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
2: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही
1: जी।
2: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता है आपको, एक फिल्म आई थी औलाद, उससे पहले एक फिल्म आई थी शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था, उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद, एक गाना था उसका

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं हूँ,
1: जी बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए।
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिस जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी,
1: बिल्कुल,
0: एक बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता
1: कहा।
0: है
1: और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए,
1: जोड़ता
0: है
1: है।
0: ना।
1: बिल्कुल।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से

0: पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: बॉम्बे टॉकीज,
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमासोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्यार ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक की कोई गुंजाइश ना हो, इंतज़ार इतना करो कि वक्त ना हो, और प्यार ऐसा करो कि कभी एतबार ना टूटे। जी हाँ, ये थी आपके स्वागत में कुछ पंक्तियाँ जो आपके लिए हम चुन लाए थे। और श्रोताओं, बात करें आज के दिन की, आज के चर्चा के विषय की, तो आज की चर्चा का विषय है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल बनाम लत। यानी जो सोशल मीडिया के साधन हम उपयोग में ला रहे हैं, क्या वो हमारी लत बनती जा रही है, आदत बनती जा रही है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा।

श्रोताओं, आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें दुनिया से जोड़ते हैं। इसका सही इस्तेमाल ज्ञान, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन और कई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा आदत बन जाए तो यही सुविधा लत में बदल सकती है। बार बार फोन चेक करना, घंटों बिना उद्देश्य स्क्रॉल करना, पढ़ाई या काम में मन न लगना और परिवार से बातचीत कम होना इसके संकेत हो सकते हैं। सोशल मीडिया की अधिकता समय की बर्बादी के साथ साथ तनाव और एकाग्रता में कमी का कारण भी बन सकती है। इसलिए श्रोताओं, जरूरत है कि हम सोशल मीडिया को अपने जीवन का साधन बनाएं, जीवन का केंद्र नहीं। इसके लिए स्क्रीन टाइम की हमें एक समय सीमा जो है वो तय करनी चाहिए। जरूरी कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और सोने से पहले फोन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी पर विश्वास करने के बजाय उसकी सत्यता भी हमें जांचनी चाहिए। श्रोताओं, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो ये सोशल मीडिया का हम उपयोग कर रहे हैं उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है और हर कार्य जो है वो सीमा में रह के ही किया जाए तो शोभित होता है। अब जिस तरह से समय भी आगे बढ़ता जा रहा है तो श्रोताओं, जैसे कि आपको पता ही है कि हर मंगलवार और हर शनिवार को हम एक फरमाइशी फ़ोन इन कार्यक्रम आपको सुनवाते हैं, फ़ोन करें गीत सुनें। इसमें आप हमें फ़ोन करते हैं और ये फ़ोन आप करते हैं हमारे फ़ोन नंबर 01582401168 पर, शाम यानी मंगलवार की शाम और शनिवार की शाम 4:45 से 5:10 तक आप लगातार फोन कर सकते हैं और अपनी फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। आज भी हमारे कुछ श्रोताओं ने फोन किए और अपनी फरमाइश सुननी चाहिए, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मनफूल चौधरी की पसंद का ये गाना जिसे हमने लिया है फिल्म मन से।

श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है फिल्म मन से और इसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने और गीत लिखा है समीर ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे सुनते हैं इकबाल सिंह और रणवीर सिंह जी की पसंद का ये गाना जिसे हमने लिया है सन ऑफ इंडिया से।

0: श्रोताओं, अभी आप गाना सुन रहे थे सन ऑफ इंडिया से। इसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा था शकील बदायनवी ने और संगीत था नौशाद का।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
5: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
0: लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गाना, जिसे पसंद किया है नागौर तेलीवाड़ा से पप्पू हलवाई और राजेश कुमावत ने।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं राम निवास सांगवा जाट कॉलोनी नागौर से। इन्होंने भेजी है फरमाइश फिल्म जिगरी दोस्त की एक गाने की, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, ये गाना है फिल्म जिगरी दोस्त का। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए सुनते हैं निहाज पेंटर की पसंद का फरमाइश का ये गाना। और निहाज पेंटर ने हमें फ़ोन किया है लोहारपुरा नागौर से, ये सुनना चाहते हैं बाजी फिल्म का ये गाना। तो सुनिए इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म का ये गाना, जिसे पसंद किया है महेंद्र देपन ने जिला नागौर से।

श्रोताओं, फूल और कांटे फिल्म में आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। इस गीत को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

जी हाँ श्रोताओं, आपसे मिलने को दिल करता रहता है, मुलाकात करने को दिल करता है, तो इसी तरह से आप फरमाइशें भेजते रहिए, गीत अपनी पसंद के सुनते रहिए और हमेशा अपने पास रखिए नागौर आकाशवाणी।

तो श्रोताओं, फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ ही फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम संपन्न होता है। और इसी के साथ समय की सुई भी हमें इशारा कर रही है कि हम आपसे लें अलविदा और करें नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम पणिहारी।

रिश्ता काच जूं हुए नाजुक, संभालनो पड़े बहना घणी ही प्यार सु। एक गलत बोल दुखा देवे अपना ही व्यवहार सु। मन री बात कह दो, हाँ बहना मन री बात कह दो, चुप्पी में बात बढ़ाओ कोनी, रिश्ता प्यार सु जोड़ो, नाराजगी में गवाओ कोनी। बहना, कार्यक्रम सुनने वाली सगड़ी प्यारी बहना ने धीरज लाल ने चारो घणो और घणो हेत भरो राम राम। बहना, रिश्ता बाता सु नहीं, बाता के मायने रचोड़ो जो को अपनोपन है बी सु जिंदा रहे है। अपनोपन सु जद सुने और कोई बात ने समझे, जने ही रिश्ता के मायने मिठास रहे और रिश्तो और भी ज़्यादा गहरो हो तो जावे। बहना, आजकल आपा देखा हाँ कि कोई के करने समय ही कोनी है। अब आप खुद ही देख लो नी, था कि कई दिनचर्या है, सुबह उठो और किया दिमाग जो को है काम के मायने घणो ही ज़्यादा व्यस्त हो जावे। सोचा हाँ कि बच्चा रहे जल्दी जल्दी खाणो बना देवा, पति देव के जल्दी से टिफिन तैयार कर देवा, बूढ़ा बुजुर्गा के जल्दी से चाय बना मैंने पकड़ाई देवा, है ना। और बच्चा भी देखो किया व्यस्त हुआ रहे, वह फटाफट जल्दी से उठे, जल्दी तैयार हुए, स्कूल भागा दौड़ के मायने लागे उड़ा रहे, है ना। और पति देव ने भी तो बात करने की फुर्सत ही नहीं मिले सुबह सुबह। मैंने अगर आपा कोई काम की बात कहनी भी चाहवा तो बे कहे कि माँ कने अबार टेम को नहीं। हाँ बहना, वो टेम को तो ही रोनो है।

टेम की वजह से ही तो आप देखो अपना परिवार के लोगों से ही दूर होता जा रहा हूँ। और फिर आप उम्मीद करा देखो बेना कि सुबह सुबह तो चलो आप इतनी भाग दौड़ के मायने रहवा, पछ आप काम भी सलटा लेवा, और उम्मीद करा कि पाछा जद आवेला तो शायद आप घड़ी दो घड़ी बैठर बातचीत करा ला, लेकिन पछ तो और भी मतलब व्यस्तता शुरू हो जावे। बच्चा री बात करा तो बे आप री पढ़ाई के मायने उलझ जावे, मोबाइल की दुनिया में फंस जावे, है कि नहीं? मोबाइल के मायने आओ तो देखो मम्मी मैं तुम्हारे बार बहुत थक्योड़ो हूँ, थोड़ी देर मोबाइल देखण दो। और बड़ा है तो बड़ा तो आपरे काम काज के मायने चिंता के मायने व्यस्त है, और घर में देखो बेना के मैंने कि सब जना है पर एक दूजा के कन्ने बैठर मन री बात करनी जाने लागे या कि भूलता ही जा रहा है। और अगर बहना परिवार के मायने ये बाता घर कम हो जावेला, अगर परिवार में आप एक दूसरा सु बतियावा नहीं, तो आज की मन की दूरी है ना बहना, अब मन की दूरी कद बढ़ जावेला थाने ठाई नहीं पड़ेला। बहना आज देखा कि परिवार के मायने संपत्त कोनी, पहला देखता है कि परिवार जो है मतलब संयुक्त परिवार हो तो परिवार के मायने बूढ़ा बडेरा रेवता काका काकी दादा दादी है ना, और सगला मतलब कि परिवार के मायने सब भाई जका है, भाई को भी परिवार जको है एकजुट होर रेव तो। लेकिन आजकल तो वो देखण में आ रही हूँ कि जको एकल परिवार है वो एकल परिवार भी टूटतो जा रही है। एकल परिवार में इन मीन चार पांच तो सदस्य हुए, लेकिन वे भी देखो बेना आपस में बैठर बातचीत नहीं करे है। तो आ तो वाकई में बहना बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि यूँ देखो अगर आप एक दूसरा सु बातचीत नहीं करा ला, एक दूसरा सु अपने मन की बात नहीं के वाला, तो देखो बहना अब मन की दूरी बढ़ती जावेला। तो बहना माँ कहवे कि बेटी तो ध्यान को नहीं कठे ही व्यस्त हुई ओड़ी है, मारी बात ही नहीं समझे है, कहीं ठा कहीं करे फोन के माते। और पिता ने भी तो देखो बेटा सु शिकायत है कि बेटो तुम्हारे सामने बोल रही है, और बूढ़ा बडेरा ने बेने भी शिकायत है कि माँ कने कोई बैठे को नहीं। तो वाकई में बेना आ दुखद स्थिति है, और इन्हें आपा परिवार के मायने और जो को संवाद है ना वो संवाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संवाद मतलब कि एक दूसरा ने मन की बात कहनो, आज काई हुयो आज काई नहीं हुयो, किस बात तू था को मन चुको है बहुत ज़्यादा खुश हुई गयो, कोई बात थाने कितनी दुखी कर गई, आज की चीज़ है ना आ घर के मायने आपा ने एक दूसरा ने कहना चाहिए। मतलब एक टाइम एड़ो होना चाहिए, चलो सुबह तो एक दूसरा ने आपा ने समय नहीं मिले, लेकिन शाम के समय अगर परिवार वाला सगला साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो एक दूसरा सु बाता करे, एक दूसरा ने बतावे कि पूरा दिन बैंको किया गए हो, तो वाकई में बहना कितनी बढ़िया बात रेवेला। कहवे ना बहना कि जेड़ी संगत बेड़ी ही रंगत, परिवार के मायने जैन की संगति रही, जैन को व्यवहार रही है ना, जैन को माहौल रही, बच्चा भी बेड़ो ही सीखेला बेना। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी अगर बे एक दूसरा से दूर है तो आ तो बेना ठीक होनी है। तो ये वास्ते जरूरी वो है कि आपा फोन ने भी एक तरफ रखा, एक दूजारी बात सुना, अगर लागे कि कोई दुखी है और वो चुप क्यों है तो पहला भी ने भरोसा दिलावा कि बात बता मैं थारे साथे हूँ। अब देखो पति पत्नी भी रोजमर्रा री बातें तक ही सीमित रह गया, आज सब्जी ले रहा है गया कहीं, आज सब्जी आज आ बना दूँ है ना, मतलब इतनी सी बात के मायने ही बेकी बाता खत्म हो जावे। अब एक दूजा ने यूं भी पूछो कि आज रो दिन केड़ो गयो है ना, तो ये चीज़ा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करण को मतलब है कि बात अपनी बात मनवाणों को नहीं, बात करने को मतलब है कि कई बार बात करण रो मतलब बस एक दूजा ने समझनो भी हुआ कर है, तो रिश्ता ने घणो की नहीं चाहिए, बस भी नहीं चाहिए थोड़ो समय और थोड़ो धीरज और थोड़ी समझ और घणो सारो अपनोपन। तो वो अपनोपन तो आपा अपने व्यवहार सू और समय सू ही दे सका बहना। तो रोज री छोटी सी बातचीत ही रिश्ता के मायने एक बड़ी मजबूती लावे है बहना। तो आज चीज़ थाने जरूर याद रखनी है, और परिवार के मायने सब लोग बैठर आपस में बातचीत करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आर देखा बेना कि बच्चा ने भी कई तरह की बे समस्याओं जूझ रिया है, बेटियां भी जकी है कि कई बातें मन के मायने ईवा से दबाए लेवे कि सोचे कि मारा मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझेला है ना, और बेटू भी आपकी मन की बात के वास्ते दोस्ता के मायने सोचे कि वो दोस्त ने बात के वेला। लेकिन देखो बेना अगर सही

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: बहना मारवाड़ में कहवे है ना कि जाग तो रेवे वो ही पावे, सो तो रेवे वो खोवे। और अब बात तो बिल्कुल साच है बहना, जको मिनक दुनियारी चालाकी सू धोखेबाजा सू अपनी आंखें खुली रखे वो ही अपनो घर और परिवार बचा पावे है। और बहना ये जागता रेवारी सबसे मोटी जरूरत आज देखा आना तो मारी बेना ने ही है। जी बहना बिल्कुल सही बात है, क्यों था है ना थाने, क्योंकि देखो बहना जब तक मारी बेना खुद सजग नहीं होवेला, मतलब आप सजग नहीं होवेला, खुद सतर्क नहीं होवेला, तो थे खुद ने सुरक्षित भी नहीं रख पाओला। बहना आज देखा कि समय एकदम बदल गयो है, आज धोखेबाज जका मन चला है पे केवल अपने रास्ता माते ही नहीं दिखे है, बल्कि अब जको हाथ के मायने आपा मोबाइल पकड़ रखे है ना, ये मोबाइल रे इंटरनेट रे रास्ते था के घरा तक मारी बहना रे कालजे तक पूग गया है। और ई वास्ते अगर आपा सावधान नहीं रे वाला तो देखो बहना खुद रे स्वाभिमान और खुद री सुरक्षा आपा नहीं कर पा वाला। तो बहना लोग कहवे है कि लुगाए ने तो घरे ही रहना चाहिए, बारे नहीं जावे तो ही बढ़िया है, बारे जावे लिए तो भी सुरक्षित नहीं रह पावेला। लेकिन देखो बहना घर माते भी घरे रेर भी अगर महिला जकी है बा घरेलू हिंसा रे शिकार हो रही है, बी माते अत्याचार हो रही है, और बा केवल ई वास्ते चुप है कि अगर मैं घर की बात बारे करूँला तो घर की इज्जत रो काई होवेला, बस आ सोचर बा चुप्पी धरोड़ी है। बहना पी रखने को मतलब तो मतलब वही है कि आपा अत्याचार ने और ज़्यादा बढ़ावो दे रिया हाँ, अत्याचार करण वाला को हौसलों बढ़ा रिया हाँ। तो वो सोचनो कि था कि अत्याचार सहन करण सु कहीं बे ठीक हो जावेला है ना, चुप रेवण सु सब ठीक नहीं होवे बहना। तो बहना जागरूक बनो और आपरी आवाज़ ने बुलंद करो, आवाज़ उठाओ बस खुद के वास्ते। देखो बहना और थाने इके अलावा देखो खुद के वास्ते तो आवाज़ उठानी है, इके अलावा आवाज़ को मतलब मोबाइल के वास्ते भी आपने सतर्क रहना है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोबाइल का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा है। आजकल देखा कि सोशल मीडिया को जो को उपयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़तो ही जा रही है। इको उपयोग देखो बच्चा ने देखा तो, बूढ़ा ने देखा तो, जवान ने देखा तो, हर एक जो को है वो मतलब कि सोशल मीडिया के लारे मतलब हर एक तरह की खबर भी ने मिल रही है। तो बहना डिजिटल दुनिया के मायने भी आपने सतर्क रहनी जरूरी है। अब यार देखो थोड़ा दिन पहले ही अपने नागौर की ही एक बहन के साथ बहुत बड़ो धोखो भी हुई गयो हो, बिना कोई व्यक्ति यान कियो कि भाई देखो था के खाता के मायने इतना रुपया जमा हुआ है, था के जगह खेत का रुपया जगह है बे आया उड़ा है, तो आप मने ओटीपी बता दो मैं था के भी खाता के मायने ट्रांसफर हो जावेला। और बा बहन जकी है बाता में आएगी और बिना जांचा परखा बातों ओटीपी पी ने बता दी और थोड़ी ही मतलब कुछ ही सेकंड के मायने ही 60,000 रुपये के खाता सू गायब। तो आ चीज हुए बहना, बहना ई वास्ते आपने बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जका भी डिजिटल दुनिया का जका लुटेरा है ना, ये आपने अनजान नंबरों मतलब कि आपने सेल के माध्यम से या लॉटरी को झांसो देवे है ना, तो ये गलत तरीका से आपने खाता के मायने रुपया एंटर की कोशिश कराया करे है। तो आप सावधान रहो और अनजान वीडियो कॉल से भी आपने बचनो चाहिए बहना। तो कोई ने भी आपका जका भी खाता नंबर हुआ या ओटीपी हुई या यूपीआई पिन है ये कोई ने भी थाने बिल्कुल भी नहीं बताना है। बैंक वाला थाने कदे भी फोन नहीं करेला ई वास्ते कि था की ओटीपी बताओ या था का पिन बताओ है ना। तो आ चीज आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और अगर था के साथ कोई तरह का फ्रॉड हो रही है या घरेलू भी हिंसा हो रही है तो आपने ये जका महिला हेल्प लाइन नंबर है ये जरूर था ने लिखोड़ा होना चाहिए, जका है 1090 और घरेलू हिंसा का सहायता नंबर है 181। तो एक के माते आपा कॉल कर भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सका हूँ। तो याद रखो बहना, सुरक्षित नारी खुशहाल मारवाड़।

तो देखो बेना, अपने बेटियां के मायने डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास पैदा करना है। तो बेना अब वक्त हो रही है कि थाने एक और प्यारो सुगी सुनाई दियो जावे। सुना बेना वो गीत।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: बहना अब चला आप रसोईरी दुनिया में। जी बहना, रसोईरी बात नहीं करा तो अपना तो कार्यक्रम ही अधूरो है कि नहीं बहना। बहना देखो, रसोई के मायने घनी एड़ी चीजें होया करें जबकि अपने रोजमर्रा की जीवन में काम तो आवे है, लेकिन इनके बिना अपनो काम बिल्कुल भी नहीं चले। बहना मैं बात करी हूँ नमक री और चीनी री। देखो बहना, नमक और चीनी जका को घोल अपने वास्ते कितो ज़्यादा फायदेमंद है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो अपने लू के मायने भी बचाव करे है कि नहीं। लेकिन अगर जान के अपने शरीर के मायने पानी री कमी हुई गई है तो भी वो जो घोल है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके अलावा भी वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, गुणकारी है। तो किया है तो बात करा बहना भीगी। देखो बहना, नमक जो है सब्जी रो स्वाद तो बढ़ावी है, इसके अलावा अपने बहुत जो है काम आवे। तो अगर आप जान बारे कोई सब्जी ले रहा वहाँ, तो सब्जी ने आपने नमक का पानी के मायने अच्छे तरीका से धोनो चाहिए है, जका सु जका भी तरह का बैक्टीरिया है वे मर जाया करे। और इरे अलावा देखो बहना, आप जके रसोई के मायने कुछ अगर बर्तना के मायने बहुत ज़्यादा चिकनाई होगी है, जमियोड़ी है, तो बिक मायने देखो नींबू और नमक ए दोनों को अगर आप मिश्रण अगर वे बर्तना माते लगावा तो जल्दी से दाग चिकनाई ए तो गायब हो जावेला। और इरे अलावा देखो बेना, चीनी जकी है, चीनी भी आप देखो ज़्यादा तो नहीं खानी चाहिए क्योंकि चीनी ज़्यादा नुकसान भी करे है। तो लेकिन चीनी कटे कटे फायदों भी पहुँचावे है, जिया कि अगर सोचो आप टमाटर की सब्जी बनाई हाँ या कोई भी खट्टी जकी चटनी बना ली हाँ, तो ज़्यादा खट्टी होगी है, तो अगर आप भी के मायने चुटकी भर चीनी डाल देवा तो भी कुछ जो स्वाद है वो संतुलित हो जावेला। और देखो बेना, अगर अपने गले के मायने बहुत ज़्यादा खराश है, मौसम थोड़ो ठंडो है तो खराश तो हो भी सके है कि नहीं। तो आप अगर गुनगुना पानी के मायने थोड़ो नमक डाल अगर बिका कुल्ला करा तो अपना जो गलो है वो साफ हो जावेला। इरे अलावा देखो, जो सरसों को तेल है बिक मायने अगर आप थोड़ो नमक मिलार दांता के माते लगावा तो जका ने भी पायरिया री जकी शिकायत है आ भी दूर हो जावेला। तो बहना एक कुछ इनका गुण है जका को आपने फायदो उठाना चाहिए। और अब वक्त हो रही हो कि थाने एक और प्यारो से गीत सुनाई दियो जावे, तो सुना बहना वो गीत।

श्रोताओं, अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पणिहारी। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करें। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 200

0: 150 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FMN 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का आरजू फिल्म के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को आरजू फिल्म में। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं बैराग फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: सावड़ियो पापी पड़े रे रंग बदल गया महका,
1: सावड़ियो पापी पड़े रे रंग बदल गया महका,
0: ओ सावड़ियो पापी पड़े रे रंग बदल गया महका,
1: सावड़ियो पापी पड़े रे रंग बदल गया महका।
0: किया जोड़ाई गर्मी में तो जोड़ी का नकारा
2: पावर पाने पंखियों जोड़ा जो कहीं पार में हरी बाग जो छो बिनाल में पावर पाने पंखियों जोड़ा।

0: अरे लुआ चाले जोर की सरे गर्मी की रुत भारी,
1: लुआ चाले जोर की सरे गर्मी की रुत भारी,
0: लुआ चाले जोर की सरे गर्मी की रुत भारी,
1: लुआ चाले जोर की सरे गर्मी की रुत भारी।
0: मन ला दो सीकर की था एक सोमनी झारी रे भावा।

0: श्रोताओं, अभी जो आपने लोकगीत सुना वो गाया था गणपत लाल डांगी और पार्टी ने।
1: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
0: लीजिए श्रोताओं, मार्टी के स्वर कार्यक्रम में अब सुनते हैं अनूप तिवारी का गाया ये लोकगीत।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 51,000 युवाओं को रोजगार की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में कहा, विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की बड़ी भूमिका। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी। दक्षिण पश्चिम मानसून की राज्य के पश्चिमी जिलों से विदाई। अगले 3-4 दिनों में समूचे प्रदेश से मानसून विदा होने के आसार। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आगाज। 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करने के साथ ही अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की प्रतिभा और कौशल ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को

0: आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में भी रोजगार मेले आयोजित किए गए। राजधानी जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने 8 विभागों में नवनियुक्त 140 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम के संकल्प के अनुसार कार्य करने का आह्वान किया।
1: आज जो विश्व राष्ट्रीय रोजगार मेला है उसमें 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आज जो नियुक्ति पत्र 8 विभागों द्वारा दिया जा रहा है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम है, इस भाव से आपको आज जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है ये भाव आपको रखना है। आप जिस भी विभाग में काम करें, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के आधार पर आपको कार्य करना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत के प्रयासों का भी जिक्र किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अगले महीने से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। योजना के पहले चरण में राजस्थान सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि अगले साल 31 दिसंबर तक 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में आयोजित AHPI नेशनल लीडरशिप समिट को संबोधित किया। कल से शुरू हुए 2 दिन के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के स्वास्थ्य नीति निर्माता, अस्पताल प्रमुख, स्वास्थ्य प्रशासक और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में स्वास्थ्य संस्थानों की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें कुशल मानव संसाधन की कमी, बदलती तकनीक, मरीजों की बढ़ती अपेक्षाएं सहित अन्य विषय शामिल हैं। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही संस्थानों और मरीजों के बीच विश्वास बनाए रखने की प्रभावी रणनीतियों पर भी विचार किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के तहत निकाय प्रमुख के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन रहा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जयपुर से भाजपा ने सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सुनीता मावर को इस पद के लिए चुना है। इन दोनों पार्षदों ने आज महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर जोधपुर में भाजपा ने प्रसन्न लाल मेहता और कांग्रेस ने 4 पार्षदों के नामांकन भरवाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस प्रत्याशी

0: करने में जुटे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों से विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके विदा होने की सामान्य तारीख 17 सितंबर होती है। आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा रामगढ़, मोहनगढ़, फलौदी और खाजूवाला से होकर गुजर रही है। वहीं अगले 3-4 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों से भी मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में बारिश 16% कम हुई है। 3 जिलों डीग, धौलपुर और सलूम्बर में सामान्य से अधिक पानी बरसा है। 25 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस बीच आज सवाईमाधोपुर सहित कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। कल कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर सहित 13 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों, उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा देने की मुहिम, ये मुहिम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और उनका उपयोग, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना। नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इस पहल को बढ़ावा दिया, जिसमें सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ साझेदारी में लागू किया गया। जेम पोर्टल पर इसके लिए विशेष विंडो भी बनाई गई है। आकांक्षी ब्लॉक स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन इस पर कर सकते हैं। इससे कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल आयात निर्भरता कम करने के देश के संकल्प को भी दर्शाता है। ये नवाचार, निवेश और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम है। समाचार कक्ष से सलेहा गाजी।
0: 20वें एशियाई खेलों का आगाज आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे पालोमा मिजुहो स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत भारत के ध्वजवाहक रहे। एशियाई खेल 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इनमें 43 खेलों में 469 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले होंगे, जिनमें 45 देशों के लगभग 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इनमें पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और अमन सहरावत भी शामिल हैं। जापान तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस बीच एशियाई खेलों में मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल जापान के निशिन में सेमीफाइनल में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारत ने कल मेजबान जापान को 8 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 51,000 युवाओं को रोजगार की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में कहा, विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की बड़ी भूमिका। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की राज्य के पश्चिमी जिलों से विदाई। अगले 3-4 दिनों में समूचे प्रदेश से मॉनसून विदा होने के आसार। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आगाज। 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश ने तैयार किया है। जिले में 17 सितंबर से विकसित भारत जनसेवा अभियान शुरू हुआ। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में दीपोत्सव के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया और रक्तदान कार्यक्रम हुआ। विद्यालयों में 7 अक्टूबर तक मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 सितंबर तक नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम और 19 से 25 सितंबर तक ग्रामीण सेवा सेतु आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सेवा ज्योति कलश, सेवा मेरा योगदान, सेवा

0: की कहानी और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसी गतिविधियां भी होंगी। जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों में पुनर्मतदान हुआ। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते ये पुनर्मतदान कराया गया। अब वहां अध्यक्ष पद के लिए कवायद शुरू हो गई है। आज 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 25 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जाएगी। जिले में नीट पीजी 2026 की पुनः परीक्षा 5 सितंबर को 5 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा में 2,416 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। नीट पीजी की मूल परीक्षा 30 अगस्त को हुई थी, लेकिन सीतापुरा के 2 केंद्रों पर आंतरिक विद्युत आपूर्ति में समस्या के कारण परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद इन अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई। जिले में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 भी आयोजित हुई। दोनों पारियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति करीब 57% रही। छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की तारीख तय की गई है। सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए ये प्रक्रिया 15 सितंबर तक और सत्र 2025-26 के लिए 15 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़े करीब 13,500 छात्रवृत्ति आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित बताए गए हैं। विद्यार्थियों से निर्धारित समय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां चलाने और मौसमी बीमारियों तथा सर्पदंश के मामलों की पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले कुष्ठ रोग अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। गैर संचारी रोगों की जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, परिवार नियोजन, टीकाकरण और छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले की 10 पंचायत समितियों के करीब 100 लाभार्थियों ने भाग लिया। जयपुर में हुई इस कार्यशाला में नए चयनित लाभार्थियों और वर्ष 2025-26 में स्वीकृत आवास पूरे करने वाले लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी दी गई। रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जामडोली स्थित राजकीय मानसिक विमंदित गृह की बालिका विंग में आवासरत बालिकाओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। इस अवसर पर बालिकाओं को मिठाई और उपहार दिए गए। बालक और बालिकाओं ने संगीत तथा नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। दिवाली के लिए आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। लाइसेंस 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। आवेदन उपस्थित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में निर्धारित दस्तावेजों के साथ जमा कराने होंगे। 17 अगस्त को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। देश में 51,000 नौजवानों ने नौकरी लागण रा कागज मिलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वां रोजगार मेला माए कहो विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण माए नौजवाना रो मोटो काम। प्रदेश माए नगरीय निकाया रा अध्यक्ष ओहदा रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो फियो। राज्य रा तुणी हल्का माए चौमासारी बिरखा बंद हुई। आवता 3-4 दिन माए आखा राज्य माए चौमासारी बिरखा बंद हुए बन रा आसार। 20वां एशियाई खेल जापान माए शुरू किया। भारत रा 500 खिलाड़ी 37 होड़ा माए भाग ले वेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला कुछ बरसाओं नौजवाना ने आवता बगतरी चुनौतियां रे मुजब तैयार करण माथे ध्यान दे रही है। वे आज 20वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बोल रहा है। श्री मोदी न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और संगठन में नवी नौकरी लाग्या 51,000 रो बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ई मौके वे कहो के आवता भगत री चुनौतियां रो सामो करण लायक बनावण सारू वाने जरूरी कौशल री सिखावण देवण सा गई मौका मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहो के सरकार गैर सरकारी हलका माय नौकरियां रा मौका बधावण सारू ही काम कर रही है। वे कहो के भारत लारला कुछ बरसा माय करीब 40 देशां सागे मुक्त कारोबार रा करार की ना है जाऊं देश रा नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा नुआ मौका बन रहा है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: प्रधानमंत्री कहो कि भारत आज दुनिया रो तीजो मोटो स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वे कहो कि मान्यता मिलोड़ा स्टार्टअप माए करीब आधा Tier 2 और Tier 3 शहरा माए है। श्री मोदी कहो के गांव और कस्बान और नौजवान देश की माली व्यवस्था ने आगे बधावन माय खास काम कर रहा है। इबीचे देश माय 45 ठोड़ा आज 20वां रोजगार मेलो लगाईचियो। नुवी नौकरी लागण वाला वित्त रेल गृह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और महकमा माय सेवा देवेला। प्रदेश माई जयपुर और उदयपुर माई रोजगार मेला लगाईचिया। जयपुर माई राखी जा कार्यक्रम माई केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी 8 महकमा माई नौकरी लाग्या। 140 सोमबत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ई मौके चौधरी कहो के साल 2047 ताई विकसित भारत रो संकल्प सांचो करण माई नौजवाना रो खास काम है। वे मोटियाराओं राष्ट्र प्रथम रा संकल्प सागे काम करण सारू कहो।
3: आज जो विश्व राष्ट्रीय रोजगार मेला है उसमें 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आज जो नियुक्ति पत्र 8 विभागों द्वारा दिया जा रहा है मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम है। इस भाव से आपको आज जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है ये भाव आपको रखना है। आप जिस भी विभाग में काम करें ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा पारदर्शिता और संवेदनशीलता के आधार पर आपको कार्य करना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि प्रति व्यक्ति कार्बन पैदा करण में भारत रो योगदान दुनिया रा औसत रा आधा ही कम है। वे आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य मुद्दा माथे राखी जिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि कार्बन पैदा करण री जिम्मेदारी गलत तरीकों विकासशील देशों माथे डाली जाती रही है जदकि विकसित देशों में भारत री तुलना में 6 गुना बत्तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। श्री मोदी कहो कि लाडला 12 साल में भारत पर्यावरण जुड़िया हर हलका में असाधारण प्रगति की नी है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी कार्बन एमिशन पर रोकथाम हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: कार्यक्रम में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो कि देश में बनवा वाले कुल बिजली में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों रो योगदान 54% बत्तो है जो तय करीजी तादाद खूब बत्तो है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे ओर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना रा दूजा दौर में आवता महीना कई राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रा गांवां ही हलका माए करीब 34,000 नौजवानों ने सिखावन देवन रो काम शुरू करियो जावेला। योजना रा पहला दौर माए राजस्थान समेत 14 राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेश शामिल करीचिया है। मंत्रालय रे मुजब आवता साल 31 दिसंबर ताई 3.5 लाख होमबत्ता नौजवानों ने सिखावन दी जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राजस्थान निकाय चुनाव 2026 रा तेत निकाय प्रमुख सारू पर्चा दाखिल करन रा आखिरी दिन आज जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए महापौर ओहदा सारू खास सियासी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रा उम्मीदवार समेत न्यारा न्यारा उम्मीदवार पर्चा दाखिल कीना। जयपुरों भाजपा सुनील कोठारी ने जबकि कांग्रेस सुनीता मावर ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों पार्षद आज महापौर ओहदा सारू चुनाव बाबत नाम पाना दाखिल कीना। जोधपुर माए भाजपा री ओरों प्रसन्न लाल मेहता और कांग्रेस री ओरों 4 पार्षद पर्चा दाखिल कीना। कांग्रेस रे मुजब जी उम्मीदवार रा नाम मथे एक राय बनेला पार्टी रा सगला पार्षद वारी हिमायत करेला। कोटा माए कांग्रेस री ओरों सुनीता सुमन और भाजपा री ओरों अनुसुईया गोस्वामी पर्चा दाखिल कीना। पाली नगर निगम रा महापौर ओहदा सारू भाजपा री नमिता बुबकिया कांग्रेस री सुमित्रा जैन और निर्दलीय उम्मीदवार राजबाला हिंगड़ चुनाव मैदान माए है। नगर निगम चुनाव माए महापौर ओहदा सारू शांति सागर निपख मतदान तय करावन बाबत निर्वाचन विभाग तैयारियां पूरी करण माए लाग्योड़ो है। 25 सितंबर ने निकाय प्रमुख रा चुनाव सारू वोट पड़ेला। अरब मौसम राज्य रा आतुणी हलका माए चौमासारी बिरखा बंद वेगी है। मौसम विभाग रे मुजब चौमासारी बिरखा सामान्य तौर 17 सितंबर बंद वे जावे है। इन बीचे आज दक्षिण पश्चिम मानसून री वापसी रेखा रामगढ़ मोहनगढ़ फलौदी और खाजूवाला वेते निकल रही है। आवता 3-4 दिन माए प्रदेश रा दूजा हलका माए चौमासारी बिरखा बंद हुए जावन रा आसार है। जल संसाधन विभाग रे मुजब इन दफा प्रदेश माए 16% कम बारिश हुई। केवल डीग धौलपुर और सलुम्बर माए सामान्य उम्बत्तो पानी बरसियो। 25 जिला माए सामान्य और 13 जिला माए सामान्य कम बिरखा हुई। इन बीचे आज सवाई माधोपुर समेत कठे कठे हल्की मझला दर्जारी बरसात हुई। काल कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ अजमेर उदयपुर और डूंगरपुर समेत 13 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करीचियो है। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय सामान उद्योग और कारीगरान ने बधाओ देवन री मुहिम। आ मुहिम खुदरे पाण उबो भारत बनावन री दिशा माए घनी खास साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और उनका उपयोग, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना। नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इस पहल को बढ़ावा दिया, जिसमें सरकारी ई मार्केटप्लेस यानी जेम पोर्टल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ साझेदारी में लागू किया गया। जेम पोर्टल पर इसके लिए विशेष विंडो भी बनाई गई है। आकांक्षी ब्लॉक स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन इस पर कर सकते हैं। इससे कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल आयात निर्भरता कम करने के देश के संकल्प को भी दर्शाता है। ये नवाचार निवेश और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम है। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी।
1: प्रदेश माए SI भर्ती परीक्षा 2021 काल ओजुली चावेला। दो पारियां माए फेवन वाली ई परीक्षा सारू 11 जिला माए 666 सेंटर बनाई चिया है। परीक्षा माए 2,18,000 बत्ता उम्मीदवार ने शामिल फेवन रा आसार है। ध्यान जोग है कि साल 2021 माए लीरी जी ई परीक्षा रो पेपर लीक वेजावन रा आरोप पाछे आ परीक्षा दोबारा ली जा रही है। 20वां एशियाई खेल आज जापान रा आईची नागोया माए सरूफिया। इन माए भारत री ओरों निशानेबाजी बैडमिंटन कबड्डी मुक्केबाजी और क्रिकेट समेत 37 होना माए 500 खिलाड़ी शामिल फेर रहा है। उद्घाटन जलसा माए भारत री ओरों निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत भारत रो झंडो लेर चालिया। 4 अक्टूबर ताई चालन वाला आ एशियाई खेला ने महिला क्रिकेट होड रा सेमीफाइनल माए मौजूदा चैंपियन भारत रो मुकाबलो काल निशिन माए भारत रा समय रे मुजब समारे 10:30 बजाऊ बांग्लादेश हु फैला नु पहली भारत काल मेजबान जापान ने 8 विकेट हरायो भारत महज 5 ओवर रा खेल माए जीत हासिल कर लीनी दूजी कानी बांग्लादेश और चीन बीच फेवन वालों क्वार्टर फाइनल मुकाबलो बारिश के कारण रद्द हुआ पाछे बेहतर आईसीसी रैंकिंग रा आधार बांग्लादेश ने सेमीफाइनल माए जगह मिल गई आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो देश माए 51,000 नौजवानों ने नौकरी लागण रा कागज मिलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वां रोजगार मेला माए कहो विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण माए नौजवाना रो मोटो काम राज्य माए नगरीय निकायां रा अध्यक्ष ओहदारा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो फियो प्रदेश रा तुणी हलका माए चौमासारी बिरखा बंद भी आवता 3-4 दिन माए आखा राज्य माए चौमासारी बिरखा बंद वेवण रा आसार और 20वां एशियाई खेल जापान माए शुरू हुआ भारत रा 532 खिलाड़ी 37 होड़ा माए भाग ले वेला इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो नमस्कार
5: FML 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी जिसे हम आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित कर रहे हैं कृपया प्रतीक्षा कीजिए

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा श्रोताओं ने थांगा भाई राजू को घणो घणो राम राम सा, और विशाल भाई तन भी राम राम सा।
7: राम राम राजू भाई, सगड़ा किसान भयान घणा घणा राम राम सा।
6: और देखो किसान वाणी कार्यक्रम है, और देखो अबार जो सितंबर महीनो चाल रहा है, इका जो अंतिम जो पखवाड़ो है बीम जो अपना कृषि कार्य है वह अपना किसान भाई कर रहा है। तो देखो बाहर का टाइम में देखो मौसम भी थोड़ो बिगड़ेड़ो है, कदे बरसात ज्यादा भी हुई कदे कम भी हुई। किसान भाई जगह अगेती फसल लगा रखा बहुत कमाए, देखो नुकसान भी हुआ है, देखो मूंग की फसल ही या कोई बाजरा की फसल ही कटाई होगी खेत में रहेगी तो पानी पर बहुत बहुत नुकसान हुए है या जड़गी। तो देखो अबार जो काम करवा का जो है देखो किसान भाई बने आप यही कहो चाहूंगा कि जो अपनी फसल जो कटाई कर ली है बिन धूप कमाए सूख बाद जो अपना सिट्टा है या कोई पड़िया है मूंगा की या और उड़द की या जो सोयाबीन की कटाई है बन कर ली तो बन देखो सुरक्षित स्थान पर बन रख ले और बन ढके और बन पानी से बचाव करे, धूप निकला जाना बन सुखा ले और जो कड़बी है या चारों और भी जो है किसान भाई काट रहे फसल बाजरा है ज्वार है मक्का है तो बन भी देखो छोटा छोटा पुड़ा बना और बन इकट्ठा कर ले धूप कमाए ने सूख बा देवे पानी भर बहु फसल ने खराब नहीं होबा देवे ताकि वहां को नुकसान हो बसू बच जावे। और देखो अपने जो मूंग उड़द और दलहनी जितनी फसल है जो कटाई होगी है कटाई पर चल रही है तो बन देखो सुरक्षित थ्रेसिंग कराओ बन की सूखबा के बाद में और सुरक्षित स्थान पर ही बन रख ताकि जो वहां दाना है वह खराब नहीं हुए। और जी आपने जो धान मक्का बाजरा सोयाबीन जो फसल है कोई फसल जो पकाओ दिन जगह मक्का है बाजरा है कोई धान है बम कोई कीड़ा लाग रहा है तो बम को देखो कीट को नियंत्रण भी करे जो अपनी फसल में जो उत्पादन के साथ में जाएंगे जो गुणवत्ता है भी बनी रहे गुणवत्ता खराब नहीं हुए।
7: देखो इस समय में आपने जी के हवा में जी के नमी हुए और दिन को जो तापमान है एक कारण देखो भूरा फुदगा नाम को और शीश ब्लाइट झुलसा रोग को प्रकोप हुए वो तेजियों फैलिया करे जीव कहीं फसल की जड़ा के अनुसार अपन किसान भाई निरीक्षण करनु चीज है जिसको कहीं कीट नियंत्रण पर काबू ले सके।
6: बिल्कुल। और देखो आप बतावा अबार जी को जो बरसात हो रही है ये को मैं देखो ज्यादा बरसात हो रही है तो इको पानी है तो इको भी अपन जल प्रबंध भी करना चाहिए अपने फार्म पौंड है डिग्गी है और कोई व्यवस्था तो बिम कर लिया नहीं तो जो पानी है जो अपने फार्म पाउंडर ये भर जावे तो भी के बाद में जो अतिरिक्त ज्यादा पानी रहे तो भी को अपन जल निकास भी करना चाहिए ताकि अपनी जो फसल है खेत कमाइन है वह खराब नहीं हो और आगे की जगह आप तैयारी करा जगह अपनी जो फसल कटाई नहीं हुई भी की कटाई कर बाकी मान लो या और आपने जो मूंगफली है या धान है बम ज्यादा पानी भर जावे तो देखो फसल खराब भी हो सके बम रोग और कीड़ा लाग बाकी भी समस्या रहे हो तो भी का निस्तारण के लिए अपन उचित जल प्रबंध की भी आवश्यकता है। और देखो मूंगफली पक जावे या जो सोयाबीन फलियां पकबा लाग रही है तो बम आप रोग कीट की निरीक्षण कर बम देखो पकवा के बाद में वहां को आप फसल खेत में समेट लिया मूंगफली निकाल लिया खुदाई कर लिया तो और सुरक्षित बन आप जगह रख दें ताकि मौसम का विपरीत परिस्थितियां में अपनी जो फसल है खराब नहीं हुए। और जो आप वाली जो फसल है रबी की जगह आप तैयारी करा
7: जी
6: तो जो खेत खाली हो रहा है बन साथ ही आप देखो सादा हलसू और जो अपना जो तवा वालो हल है हेरो है जगह अपना पलेवा है ब्यू अपन जुताई करना करके नमी संरक्षित करनी चाहिए ताकि अपने जो अगली फसल है बन आप सही तरीका लगा सका और बंको पूर्ण रूप से अपना जो अंकुरन हो जावे कम नमी नहीं रहे और आपने जो पलेवा की आवश्यकता नहीं पड़े अगर जरूरत पड़ रही है अपन का नाम की सड़ी गोबर की या कंपोस्ट खाद डालबा की तो वह भी अपन डालना चाहिए।
7: देखो राजू भाई, कुल मिलाकर बात आ है कि देखो किसान के लिए वो जो को टेम है वो देखो एक प्रकार दोहरी जिम्मेदारी को टेम है। एक तरफ तो देखो वन चार महीना की मेहनत खरीफ फसल संभाल काटनु है और दूसरी तरफ बने रवि फसलों की नींव रेखनु है।
6: बिल्कुल,
7: तो वो पखवाड़ू है बहुत महत्वपूर्ण है।
6: तो देखो आपकी जो फसल है वन सुरक्षित कटाई छटाई कर लिए और जो को फसलों को जो खाद्यान्न है बन जो सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि खराब नहीं हुए और आप देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ाओ और ले चला जानकारी की ओर। तो देखो आज जानकारी है मरुद्रा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया अवसर। डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव जी आगा जानकारी दे बने और मधु जी जानकारी दे रहे, तो मिला लेवा जानकारी
7: लेवा।
8: किसान वाणी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव, सस्य विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आज आप हमारे बीच आए हैं और आज की हमारी जानकारी का विषय है मरुधरा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया सुनहरा अवसर। तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, हमारे स्टूडियो में आपका खूब स्वागत, नमस्कार।
9: नमस्कार।
8: तो डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की आज हम बात कर रहे हैं, तो ये ड्रैगन फ्रूट क्या है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और किसान भाइयों को जरा बताइए और इसकी खेती क्या राजस्थान में संभव है?
9: जी हाँ मैम, ये ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस कुल का पौधा होता है, ये बहुवर्षीय होता है।
8: जी
9: भाई, एक बार लगा दिया तो आराम से आप बढ़िया 10-15-20 साल तक इसकी खेती ले सकते हैं। इसका फल है वो काफी पौष्टिक होता है। इसका फल आपने देखा होगा, जैसे कई बार गुलाबी रंग का होता है, पीले रंग का भी होता है और ये स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है।
8: जी,
9: और बाकी बाजार में देखें तो इसकी बाजार में वैल्यू काफी अच्छी है, मार्केट डिमांड काफी अच्छी है, इसलिए इसकी काफी अच्छी कीमत आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये अपने राजस्थान में, इसको क्या है कि कम पानी की जरूरत होती है, अपने राजस्थान में पानी काफी सीमित मात्रा में है, इसलिए ये अपने राजस्थान के लिए काफी अच्छी वैकल्पिक फसल हो सकती है।
8: जी, वैसे भी हमारा जो राजस्थान प्रदेश है इसमें पानी की अक्सर कमी हुआ करती है और ऐसे फ्रूट को अगर हम चूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इस फ्रूट को लगाने की कोई खास विधि है और इसे एक एकड़ में हम कितने पौधे लगा सकते हैं?
9: हाँ जी मैम, इसको लगाने के लिए लगभग दो विधियां हैं, जिसमें एक तो रिंग पोल मेथड है।
8: हाँ जी।
9: और एक ट्रैली सिस्टम है।
8: जी।
9: रिंग पोल मेथड में क्या होता है कि एक खंबा लेते हैं 6-7 फीट का, उस खंबे के ऊपर एक या तो आप टाई ले सकते हो या फिर कोई सीमेंट की गोलाकार आकृति ले सकते हो, जिससे क्या है खंबे के सहारे प्लांट जाके प्लांट को ऊपर जो गोलाकार आकृति है उसमें फैला दिया जाता है, जिससे कि अच्छी फ्रूटिंग ली जा सकती है इसमें।
8: जी।
9: और इसके अलावा दूसरा ट्रैली सिस्टम है। ट्रैली सिस्टम में थोड़ा सा प्लांट ज्यादा ले सकते हैं अपन, लेकिन ज्यादा बेहतर मैं रिंग पोल मेथड को मानूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा आसान रहता है।
8: जी, ये तो आपने विधि बताई इस पौधे को लगाने की, अब बात हम करें पोषण की और सिंचाई की। तो इसे पानी देने की कौन सी विधि है और किस तरीके से इस पौधे का हमें खास ध्यान रखना चाहिए?
9: इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले तो अपन को 3 फीट चौड़ी बेड बनानी चाहिए और जो पोल है पोल के चारों तरफ 1 फीट गहरा खड्डा, 1 फीट गहरा चौड़ा खड्डा बना लेंगे, उसमें लगभग 70% खाद और 30% मिट्टी का मिक्सर डालेंगे। इस पौधे को कम पीएच की जरूरत होती है, लगभग 3.5-6.5 पीएच के आसपास की जरूरत होती है। अगर अपन अच्छी सड़ी हुई खाद लेंगे तो उससे वो पीएच मेंटेन रह जाता है इसका।
8: जी।
9: इसलिए इसमें अपन अच्छी खाद डालेंगे। इसके बाद में जो पोल के सहारे एक पोल के चारों तरफ अपन 4 पौधे लगा सकते हैं, फिर उसको वो पौधा पोल के सहारे बढ़ के आराम से उसको अच्छे से फैला के अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं उसमें। इसके बाद इसमें पानी की अपन को सबसे कम जरूरत पड़ती है इसमें। लगभग गर्मियों में तो आप 3 दिन में एक बार पानी दे दो और सर्दियों में लगभग 7 दिन से आपको पानी की जरूरत होगी, और इसमें ड्रिप मेथड आप यूज करो तो वो ज्यादा बेहतर है। और अपने राजस्थान में तो लगभग भाई जुलाई से सितंबर तक तो अच्छी बरसात हो जाती है, तो लगभग जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक पानी की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है इसमें
10: जी।
9: जून से लेके जनवरी से लेके जून तक आपको थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, बाकी और फसल के कंपैरिजन में इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। और पोषण की बात करें तो इसमें सिर्फ गोबर की खाद की ज्यादा जरूरत होती है, जो कि आप साल में 2 से 3 बार दे सकते हैं, ज्यादा खाद भी नहीं देनी होती है इसमें, क्योंकि इसे ज्यादा फिर साइड इफेक्ट आ जाते हैं, इसलिए कम खाद की रिक्वायरमेंट होती है इसमें
10: जी। डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, जहां हम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जहां पानी का अभाव अक्सर देखा जाता है, तो यहाँ धूप में तेजी भी बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती है, तो जो ड्रैगन पौधा है या ड्रैगन फ्रूट है, क्या ये धूप को सहन कर पाएगा राजस्थान की जो धूप होती है, या फिर राजस्थान की तपती धूप से इसकी सुरक्षा के कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं।
9: जी हाँ, वैसे तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर तक उगाया जा सकता है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है गर्मी, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो अपन इसमें एक तो शेडिंग की फैसिलिटी कर सकते हैं, इसके अलावा आप जैविक मल्चिंग कर सकते हैं, और जो सिंचाई है वो काफी नियमित टाइम पे देनी चाहिए, जिससे गर्मी से इसको बचाया जा सकता है।
10: किसान भाइयों, कार्यक्रम चल रहा है किसान वाणी, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी यादव, शस्य विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आज आप हमारे आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए हैं, और आज जिस विषय पर आप हमें जानकारी दे रही हैं वो विषय है मरुदरा में ड्रैगन फ्रूट, खेती का नया सुनहरा अवसर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा आपसे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में निवेश करने से पहले किसानों को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
9: किसी भी फसल को बड़े क्षेत्र में लगाने से पहले किसान को उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, अच्छी तरह से योजना बना लेनी चाहिए, जैसे कि उसकी बाजार में कितनी मांग है, पौध की सामग्री अपन को कहाँ से मिलेगी, सिंचाई की फैसिलिटी अपने पास है या नहीं है, और जो ये सहारा प्रणाली है, जो पिलर सिस्टम है, वो कहाँ से लेना है, कैसे लगाना है, इसके लिए जो लेबर की जरूरत है वो कितनी होगी, उत्पादन की लागत क्या होगी, और जो फ्रूट होगा, फ्रूटिंग होगी, उसकी बिक्री की संभावनाएं है या नहीं है, इन सब चीजों का आकलन कर लेना चाहिए। और किसान भाई को पहले ये फसल लेने से पहले किसान भाई को पहले छोटे क्षेत्र में इस फसल को लगा लेना चाहिए, ताकि उससे वो अनुभव ले सके, देन उसको बड़े क्षेत्र में जाना चाहिए।
10: तो ये सब जानकारियां जो है हमारा किसान भाई कहाँ से जुटाए?
9: इसके लिए आसपास के किसी केवीके में जा सकता है, किसी कृषि विशेषज्ञ से मिल सकता है,
10: हमारा जो नजदीकी कृषि अनुसंधान केंद्र है वहां जाकर हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
9: इसके अलावा भी कहीं कहीं ड्रैगन फ्रूट के फार्म लगा रखे हैं कई किसानों ने, वहां जाके विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने किस टाइप से खेती कर रखी है, उनसे वो जानकारी एकत्रित करनी चाहिए।
10: जी, तो पहले जब भी हमें इस फ्रूट की खेती करनी हो या इसमें निवेश करना हो तो ये सारी जानकारी हमें सबसे पहले जुटा लेनी चाहिए। इसके अलावा और किसान भाइयों को आप ड्रैगन फ्रूट से संबंधित जो खेती है इसमें और कौन सी खास बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? आप हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
9: सिर्फ ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं होता, अपन को इसकी बाजार की जानकारी भी होनी चाहिए। इस फसल में कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे अगर जल भराव हो जाए तो जल भराव की वजह से इसकी जड़ें सड़ने लग जाती हैं
10: जी,
9: और कई बार अधिक गर्मी की वजह से भी थोड़ा नुकसान देखने को मिलता है, तो अधिक गर्मी के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया कि शेडिंग वगैरह करनी चाहिए।
10: हाँ जी।
9: और अगर जल भराव की समस्या है तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा इसमें पोषक तत्वों की कमी भी देखने को मिलती है, तो निरंतर अपने फार्म का विजिट करते रहें, देखते रहें पौधे को, पौधे की निगरानी करते रहें, ताकि कोई पोषक तत्व की कमी आ रही है तो उसमें उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अलावा इसमें एक फंगस भी लगती है, फंगस जिस पौधे के जिस भाग पे फंगस लग रही है उसको काट के मिट्टी में दबा दो या दूर फेंक दो, ताकि वो फंगस आगे और ना फैले। इसके अलावा एक जैसे फ्रूटिंग आ जाती है तब चींटियां लगती है फ्रूट में, तो उसके लिए आप नीम ऑयल में पानी मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए मिट्टी में कम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए अपन को अच्छी सड़ी गली हुई खाद का उपयोग करना है ताकि मिट्टी का पीएच कम रहे, ज़्यादा ना बढ़े। इसके अलावा इसके पौध को लगाने के समय का ध्यान रखना है। इसकी पौध नॉर्मली आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक लगा सकते हो, लेकिन सबसे सूटेबल समय होता है इसके लिए फरवरी का समय सबसे बेस्ट रहता है। बाकी साल भर में आप कभी भी इसको लगा सकते हो। और ड्रैगन फ्रूट की खेती में जो अपन पिलर सिस्टम लगाते हैं, इसमें थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं कि 10 बाई 10 ले सकते हैं या फिर 10 बाई 8 ले सकते हैं या फिर 12 बाई 8 ले सकते हैं। मेरा सजेशन 12 बाई 8 का होगा, क्योंकि इसमें अपन साथ में इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, जिससे कि किसान को दो गुना मुनाफा हो जाएगा कि एक फसल के साथ में वो दूसरी फसल भी ले सकता है। दूसरी फसल में मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे अपने राजस्थान एरिया में जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गोभी हो गई, और भी अगर कोई छोटी मोटी कोई सब्जी लगाना चाहे तो किसान ले सकता है
11: जी।
9: इसके अलावा अगर पिलर की हाइट की बात करें तो पिलर की हाइट लगभग 6 से 7 फीट लेनी चाहिए, ताकि जो ड्रैगन फ्रूट है उसकी कटिंग में दिक्कत ना आए। इसमें 2 फीट तो मिट्टी के अंदर ले लेना चाहिए पोल को, और 4 फीट बाहर रह जाएगा ताकि कटिंग आसानी से हो सके। और पिलर है वो काफी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो कैनोपी है इसकी वो काफी हेवी हो जाती है, इसलिए पिलर काफी मजबूत लेना चाहिए। और इसमें सिंचाई की जरूरत के अकॉर्डिंग ही पानी देना चाहिए। अगर पानी ज्यादा दिया तो इसकी जड़ों में दिक्कत होने लग जाती है, फंगस लग जाती है, इसलिए सिंचाई उतनी ही देनी चाहिए ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, ना कि पानी ज्यादा रहे।
10: डॉक्टर साहब, इसमें फूल और फल आने में कितना समय लगता है?
9: लगभग ये पौधा 1 से 1.5 साल का होता है, तो उसमें फूल आने, फूटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट तो लगभग 1 से 1.5 साल में हो जाता है, लेकिन अगर अपन बेचने के पर्पज से देखें तो लगभग 2.5 से 3 साल में इसमें अच्छा उत्पादन मिलता है, ताकि अपन बाजार में इसको बेच सके। बाकी फूल आने से लेके फ्रूटिंग तक इसमें लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है, मतलब 30 से 45 दिन का टाइम लगता है।
10: ड्रैगन फ्रूट की खेती की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें खर्चा कितना आता है और जो किसान है वो सालाना कितना इससे कमा सकता है, यानी कि लाभ कितना कमा सकता है किसान?
9: ड्रैगन फ्रूट की खेती में खर्चे की बात करें तो इसमें मेजर खर्चा अगर अपन पिलर सिस्टम ले रहे हैं तो पिलर का आता है, और अब पौध का आता है, और जैसे खाद वगैरह का ये आ गया, तो कुल मिला के लगभग इसमें 3 से 5 लाख के आसपास पर एकड़ खर्चा आ जाता है
11: जी।
9: और इनकम की बात करें तो 2 से 2.5 साल बाद में इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए आप सालाना इनकम ले सकते हो, तो ये एक अच्छी खासी इनकम है।
10: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
9: मैं किसान भाइयों के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि बदलते मौसम और सीमित संसाधनों के दौर में खेती में विविधता लाना अति आवश्यक है। ड्रैगन फ्रूट राजस्थान के कई क्षेत्रों के लिए नया अवसर बन सकता है, लेकिन सफलता केवल फसल चुनने से नहीं बल्कि सही पौध, उचित खेत, वैज्ञानिक प्रबंधन और मजबूत बाजार व्यवस्था से मिलेगी। इसलिए किसान भाई पहले जानकारी ले, कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले, स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करें और फिर योजनाबद्ध तरीके से खेती शुरू करें।
10: मरुधरा में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया सुनहरा अवसर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमको जानकारी दे रही थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव, शस्य विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप हमारे बीच आई। तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव जी, आपका धन्यवाद।
12: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
13: उतला बोल रहे?
12: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
13: मतलब?
12: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
13: पर हम तो सब यही डाले हैं।
12: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
13: सच है?
12: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
13: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
11: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: हाँ तो विशाल भाई, बहुत ही चौकी जानकारी दवाया मधु जी। मरदुरा में ड्रैगन फ्रूट खेती को नयो अवसर, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी यादव आपन जानकारी दिया। तो एक लिए देखो आप एक लोकगीत स्वरूप चौको सो दिया। धन्यवाद। तो मिलर सुना
7: सुना सा।

0: तो राजू भाई देखो, अब घड़ी की सुइयां भी कर रही है इशारो,
1: बिल्कुल
0: तो लेवा किसान बने।
1: सा। देखो विशाल भाई, बहुत ही चौको अपना लोकगीत सुनिया, लगा दे बजरंग बली राम गोपाल योगी जी पार्टी की आवाज में। और देखो आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टाइम वे पूरा हो। और देखो थका भाई राजू
0: विशाल ने दिया आज्ञा,
1: और करा राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का।

श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है फिल्म युवा से। इसे गाया है मधुश्री और A.R. रहमान ने, संगीत दिया है A.R. रहमान ने और गीत लिखा है महबूब ने।

और प्यार हो गया। जी हाँ, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का ये गाना जिसे गाया है उदित नारायण ने, संगीत से सजाया है नुसरत फतेह अली खान ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

0: Só me passar.
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म वीर ज़ारा का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, संगीत दिया है संजीव कोहली ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म ताल का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण ने। संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लीजिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए विवाह फिल्म का ये गाना जिसे गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के ठीक 8 बज रहे हैं श्रोताओं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गानों को हेलो फरमाइश के कुछ सुनहरे पलों के साथ। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है कि सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें, करीब से कुछ चेहरे पड़े और ना जाने कितने सबक सीख लिए। जय दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आपको ले चलते हैं आपको अपने फरमाइशी गानों की तरफ। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं सर आप?
1: मैं कांति चंद्र माथुर जोधपुर से सर।
0: क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से हमारे पास फोन आते हैं। सर बताइए अपने बारे में, क्या
1: मैं
0: करते हैं
1: आपका
0: आप?
1: नियमित श्रोता हूँ सर कार्यक्रम का।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है सर। सर बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैं सर पहले नागौर में ही था
0: जी
1: और मेरे मेडिकल स्टोर था शिवबाड़ी में,
0: जी जी
1: और अभी स्वास्थ्य के हिसाब से मैं जोधपुर शिफ्ट हो गया।
0: रेडियो सुनते हैं सर आप?
1: हाँ बिल्कुल सर, बरोबर नियमित।
0: हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं सर आपको?
1: बहुत बहुत अच्छे लगते हैं सर।
0: माथुर साहब, अभी जोधपुर का मौसम कैसा है?
1: जोधपुर का अभी मौसम थोड़ा उमस भरा है
0: जी,
1: गर्मी है,
0: बरसात नहीं हो रही इस बार।
1: बरसात नहीं हो रही है, बीच में 4-5 दिन पहले हुई थी पर कम हुई।
0: जी, सही बात है। कांतिलाल जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर सावन भादो चल रहा है
0: जी,
1: सावन निकल गया, सूखा भादो चल रहा है, तो गाना पिक्चर महबूबा का हो जाए,
0: जी
1: मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा।
0: किशोर कुमार की आवाज है
1: जी
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार गणेश जी। हाँ
0: नमस्कार राजू जी, बेड़ा बात कर रहे हैं?
1: जी,
0: क्या बात है सर। राजू जी बताइए, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी सर खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है। मूंग की कटाई हुई है, बाजरे की कटाई हो रही है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, तिरमी चैनल भी हमारे को झुमा रहा है, और आगामी मोदिया खरनार मेला के भी सभी को शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। राजू जी, रेडियो कैसे सुनते हैं, मोबाइल से या फिर रेडियो लगा रखा है आपने?
1: AIR1 वो ऐप से सुनते हैं आपका?
0: न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से
1: हाँ,
0: सुनते हैं।
1: न्यूज ऑन AIR उस ऐप
0: राजू जी,
1: से।
0: कैसे लगते हैं चिरमी चैनल के कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम नागौर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। उसमें हेलो फरमाइश, हेलो गौरबंद, युवाणी, किसान वाणी, ये कार्यक्रम हमारे को बेहद ही अच्छे लगते हैं। हम आकाशवाणी नागौर के शुक्रगुजार हैं।
0: जी, राजू जी बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: आज हमारे को पंच सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं।
0: उदित नारायण की आवाज है, बहुत ही प्यारा गीत है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं प्रेम शर्मा बोल रहा हूँ। मैं
0: प्रेम जी शर्मा, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: जोधपुर
0: जोधपुर से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं
0: प्रेम जी क्या करते हैं आप?
1: तो एम्स में जॉब करता हूँ सर।
0: जी बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने?
1: मैंने कंप्लीट कर लिया अभी ये।
0: क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो रेडियो सुनते हैं सर आप?
1: हाँ सुनते हैं ना,
0: हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं। मैं वैसे नागौर का ही हूँ तो वो सुनता रहता हूँ। ऑलमोस्ट
0: हेलो फरमाइश कैसा लगता है सर आपको?
1: हेलो फरमाइश तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे मित्र को भी सुनाता हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है प्रेम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रेम जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: कोई अच्छे से सुना दो आपकी पसंद का।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी और हमारी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ है तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम के उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज आप सुन सकते हैं और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। 9:30

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाध खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
6: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
5: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
7: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
5: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: नेपाल की वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
1: I think close to 8 cargo planes have arrived.
2: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के ठीक 9 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम दर्द भरे गीत।

श्रोताओं, फिल्म बदलते रिश्ते में आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की ये मखमली आवाज। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आगे सुनिए फिल्म सहरा का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है रामलाल ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म मेरे महबूब का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है नौशाद ने और गीत लिखा है शकील बदानवी ने।

श्रोताओं, लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म आप आए बहार आई फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9:25 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए एक विशेष कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग 2.5 दशक कहें, 3 दशक कहें, 3 दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद मनोज जी।
2: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
2: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
4: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक

0: बचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर ना लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुँचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
1: जी।
2: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत। और जिस विशेष बात रखी जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
2: उसको कर रहे, क्योंकि सीधी बात है जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
1: शुभ, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
3: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
1: जी,
3: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है PM योजना, PM उदय, PM उज्ज्वला, इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किस

0: लिए आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारे स्कीम में ये जो मॉनिकर आया है, ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया, और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे, जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया। बहुत बड़ी चीज है ये।
1: जी
0: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है। तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया। सिंपल योजना है लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है, और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल
1: जी
0: मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए।
1: जी बहुत अच्छी बात की शुभमय, कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर के भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगी, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ। इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
2: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही है आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे,
1: जी जी जी,
2: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा
1: जी,
2: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन हुआ चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल, तीनों को जोड़ के आपने, तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे, अगर आप कभी भी देखें जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के,
1: जी
2: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है
1: जी, जी।
2: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें यूपीआई क्यूआर कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए
1: जी।
2: शुरुआत में इसके बल काफी आलोचना भी आपको याद होगा,
1: अच्छी
2: अच्छा आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता
1: जी।
2: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास क्यूआर कोड है
1: जी।
2: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से आप शुभ जो कि आर्थिक विशेषज्ञ ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीआई को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब
1: जी।
2: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था
1: जी।
2: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, डीबीटी किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को, यानी काला धन सफेद धन, धन धन है लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा, और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें डीबीटी कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ,

0: उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसको भी आप एक ट्रिनिटी
1: जी
0: कह सकते हैं,
1: जी
0: बट नेगेटिव ट्रिनिटी। और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था, वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं। और तीसरा, जो बीच में मिडल मैन बिचौलिया जो खा जाते थे, उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और
1: जी
0: इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 7 ट्रिलियन हो जाएगा, और उस जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में, आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह, वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का, जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपये इनकम है, वो अगर बढ़ के 160 हो जाए, उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन, ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी, ये जनधन और योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस, एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में, हर 15 दिन में, जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी
0: उस तरह से वो पे। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर, जो एक बार सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है, जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में, हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। शुभमय कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। बेशक आमदनी के आंकड़ों पर, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं, उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गाँव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी, उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
2: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज़ बदली है। फिर भी 40% के आसपास, मान के चलिए 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से, जो सुबह भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
1: जी,
2: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखें स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरा परिवार को सोचती है, ये नहीं कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास, ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर ये समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरह की कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच,
1: जी,
2: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा है सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारे जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करें। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा है कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाएं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी
1: जी
2: और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है, ठीक है, विकास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा, वो क्योंकि

0: राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गांवों की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गांवों में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्था करना वो मुश्किल था क्योंकि एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वह आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
1: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए
1: जी।
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है जी।
1: श्रोताओं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं बुनियादी परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहां जाना कठिन था अब वहां सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं, यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
0: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास की ओर कार्यक्रम में और उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
1: जी जी जी।
0: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 आज 70 के ऊपर 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है वो भी, और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे हैं तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा है आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब समग्रित करके कर रहे हैं और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है
1: जी।
0: और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर 2 सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल जैसे आभा की बात किया उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ हैं, और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा, तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा है, या आप कहीं चले गए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं, और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें, और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत
1: जी।
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगहों में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक, जैसे कहते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी, जिसे कहते हैं, फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा, जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में,
1: जी
2: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इस कहना के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के, जिसे कहते हैं हम, सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्य क्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी, कि गवर्नमेंट का जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारी स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी, जैसे मैं कहूंगा, फेज चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ, या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह, बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में, उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम, जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं, जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
0: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए, चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाए
1: जी,
0: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 तक, जो 100 साल भारत का आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी, ये तो शुरुआत से, जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा, पुरानी बात है, लेकिन उसके आगे और कई सारी चीज़ें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीजें हैं, तो वो विकास जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे है, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जैसे है कि लास्ट में जैसे अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को चाहते हैं, तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है उसके लिए जो है जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद सुबह कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है वो पहले है,
1: जी जी, जी
0: सिर्फ
1: जी,
0: सोच ही बदलाव है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते चुनौती है लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है, जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे।
1: बिल्कुल शुभ, प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है, तेल के दाम बढ़े लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं, और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ्स का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इंप्लीमेंट हों और वो साल दर साल इंप्लीमेंट होते रहे, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
0: मनु जी आपने जो बात कही बहुत अहम भी है और इस पे देखिए जैसे इससे पहले बात की सोच बदलने की बात है, और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं, एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता है, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, 3-4 चीज़ें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें।
1: श्रोताओं एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है, आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद मनोज जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा।
4: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिल्मी चैनल। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए।
5: हवा में उठती है एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
6: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
5: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
6: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
5: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
6: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के 3 कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
7: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
6: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
5: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
6: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वर्ल्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
5: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ चेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिंटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
8: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा जापान और साउथ कोरिया इवन पाकिस्तान इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
5: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
6: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशू से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशू में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोंग एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशू की। वुशू के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे, इन्हीं में वुशू भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशू के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशू की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशू अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
5: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पंती किया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
9: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की

0: गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की